फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक सवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। इस समय 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजे हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए चिंतन।
3: आजकल चहुओं ओर सब तरफ असंतोष दिखाई

0: पड़ता है। घर में पति पत्नी आपस में संतुष्ट नहीं, बच्चे माँ बाप या माँ बाप बच्चों से संतुष्ट नहीं, परिवार अपने पड़ोसियों से खुश नहीं, पूरा मोहल्ला और भी असंतुष्ट। सबसे निचली इकाई से ऊपर बढ़ते बढ़ते हम ये पाते हैं कि हम वास्तव में अपने राष्ट्र से और अपने जीवन से ही संतुष्ट नहीं, सुखी नहीं। ऐसा क्यों है? वास्तव में सभी चीजों की ही तरह असंतोष भी हमारे अंदर से ही उपजता है। कोई व्यक्ति हमारे अनुकूल यदि नहीं है तो हम उससे असंतुष्ट होते हैं। कोई जगह, कोई मुकाम हमारे माकूल नहीं तो हम उससे भी असंतुष्ट होते हैं। कोई वस्तु यदि हमें मुफीद नहीं, हमारे काम की नहीं, तो हम उससे भी असंतुष्ट रहते हैं। और यदि इन तीन बातों में से किसी एक से भी हम संतुष्ट नहीं हो पाते तो हमारे जीवन में असंतोष व्याप्त ही रहता है। और जैसा कि अक्सर होता है, हम में से अधिकांश इन तीनों से ही असंतुष्ट होते हैं। यदि यह संतोष पारिवारिक स्तर तक या फिर हमारी निजी जिंदगी तक ही सीमित होता तब भी ये समस्या इतनी विकट नहीं होती। यदि हम अपने पति पत्नी, बच्चों, माता पिता आदि से संतुष्ट नहीं तो ये हमारी ही दिक्कत होती, किसी और की नहीं। लेकिन आज जब अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए हम पूरे देश की ही व्यवस्था पर असंतोष प्रकट करते हैं, तब ये बात चिंतन, मनन और विचार मंथन का विषय बन जाती है। कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान यदि हमें अपने अनुरूप नहीं लगता तो हमें उससे असंतोष होता है। यदि गौर करें तो हम ये पाएंगे कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, केवल हमारी सोच ही उसे वैसा बनाती है। हमारे लिए यदि कोई चीज बुरी है या हमें कुछ बुरा लगता है तो आवश्यक नहीं कि वो दूसरे को भी बुरा ही लगे। किसी काम को हम बुरा मानते हैं, वही काम दूसरे को अच्छा लगता है। किसी जगह पर हम एक मिनट टिक नहीं पाते, हमें तकलीफ होती है। हो सकता है उसी जगह को दूर दूर से देखने के लिए पर्यटक आते हों। कोई व्यक्ति हमें कतई नहीं भाता, मगर हो सकता है उसके पास और लोगों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती हो। दरअसल दिक्कत हमारे अपने दिमाग से शुरू होती है, हमारी सोच से शुरू होती है। हम पहले से ही ये तय कर बैठे हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ये ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। यदि हम अपने इस अधिकार का रूढ़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान हमारा ही है। हमें चाहिए कि अपनी सोच को इतनी विस्तृत रखें जिसमें सभी कुछ समा सके। स्वामी रामकृष्ण अपनी आराध्य माँ को याचना करते हुए ये भी निमंत्रण देते थे कि यदि वे रोग रूप में या शोक रूप में उनके सम्मुख प्रकट होती हैं तब भी वे उनका वैसा ही सम्मान और सत्कार करेंगे जैसा कि सुख रूप में। तात्पर्य ये है कि यदि हम उन परिस्थितियों का स्वागत करने में सक्षम हो जाएं जिनसे कि हम आज तक डरते आए हैं, तो जीवन में संघर्ष, असंतोष और विरोधाभास स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जीवन में सभी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता हमें विकसित करनी होगी। एक जरूरी बात और, परिवार समाज और राष्ट्र के जिम्मेदार घटक होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के कुछ दायित्व निर्धारित होते हैं। यदि हम केवल इस बात पर ध्यान देने का प्रयास करें कि हम अपने निर्धारित दायित्वों का वहन भली भांति करें, और यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रयास निष्ठापूर्वक करे, तो यकीन मानिए जीवन से सारा असंतोष सदा के लिए ही मिट जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रीकांत बाकरी की आवाज में भक्ति गीत।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: आज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंग दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था। और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जिला में गोपालचंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा। विषय है रासायनिक उर्वरकों की पहचान कृषक कैसे करें। वार्ताकार है उदित नारायण नगाइस, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तमनार।
1: किसान भाई नमस्ते। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी भी फसल कोई भी हो जिसमें उर्वरकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है उस फसल के उत्पादन के लिए। तो आज हम आप लोगों से जो चर्चा कर रहे हैं कि आपके सामने जो आप लोग क्रय करते हैं बाजार से, जो उर्वरकों का क्रय कर रहे हैं, उस उर्वरकों का नकली है या असली है, उसका हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो जो बहुत उर्वरक उपयोग होने वाला है यूरिया, तो यूरिया में हमको क्या करना है, जो दाने रहते हैं उसको पानी में अच्छी तरह से घोलना, और पानी में घोल करके हम उसमें हाथ की उंगली डाल करके देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा जो पानी पहले था उससे थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसका तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से सही रूप से पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो यूरिया है वो असली यूरिया है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा आपको तरीका बताएं यूरिया की पहचान करने का, असली यूरिया का पहचान क्या है, तो इसको हम तवे पर गर्म करेंगे, और तवे पर जब हम इसको गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये गलना शुरू हो जाएगा, पानी बनेगा, और पानी के बाद गैस फॉर्म के रूप में निकल के उड़ जाएगा। फिर इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा नीम रेपित यूरिया चल रहा है तो थोड़ा सा विशेष उसी का बचेगा, बाकी यूरिया पूरा उड़ जाएगा गैस बनाकर। ठीक इसी प्रकार से हमारा और एक महत्वपूर्ण उर्वरक है डीएपी, इसको हम डायमोनियम फास्फेट बोलते हैं। डीएपी में हमारे जो किसान लोग हैं वो नाइट्रोजन और फास्फोरस का डीएपी के माध्यम से पूर्ति करते हैं। ये हमारे कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उर्वरक है डीएपी। इसका चूंकि कीमत भी ज्यादा रहता है, इसलिए इसमें मिलावट का आशंका सबसे ज्यादा बन जाता है। तो इसमें हम देखेंगे, पहला तरीका ये है कि हम जो डीएपी है उसके कुछ दानों को लेकर के और उसमें खाने वाला चूना मिलाएंगे और उसको हम रगड़ेंगे। उसको जब हम रगड़ते हैं दोनों को तो इसमें से बहुत तीव्र गंध निकलता है, और गंध इतना तीव्र रहता है कि उसको हम सुन नहीं सकते। तो इस प्रकार यदि गंध आ रहा है तो हम देखेंगे कि हमारा डीएपी असली है, उर्वरक सही है। इसी प्रकार से इसका जो उर्वरक का डीएपी का तो दूसरा तरीका चेक करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं डीएपी के कुछ दानों को लेकर के हम तवे पर गर्म करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि यह जो है फूलने लगता है, उसमें इसके दाने फूलने लगते हैं, और यदि दाने इसमें फूलते हैं हम देखेंगे तो हमारा डीएपी असली है, सही है हमारा डीएपी। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे और एक महत्वपूर्ण उर्वरक है एमओपी, म्यूरोटॉप पोटास बोलते हैं, जिसको हम पोटास की जो तत्व रहता है उसकी पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसके हम देखेंगे पोटास में इसमें भी बहुत ज्यादा मिलावट की संभावना रहती है और हम पहचान भी आसानी से नहीं कर सकते। ये इस तरीके से रहता है, यदि हम इसमें जो हमारी लाल ईंट रहती है उसको यदि कोई पीस करके मिला दें तो हम सामान्य रूप से इसका पहचान नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसकी जो पहचान करने का तरीका है, पहला तरीका यह है कि इसमें जो दोनों तरह के कण रहते हैं लाल और सफेद, इनको यदि हल्का सा पानी डाल के मिलाएंगे और हम मिला करके दोनों को रगड़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों के कण आपस में नहीं मिलते हैं, लाल कण अलग ही रहेंगे और सफेद कण अलग से रहेंगे। तो इसका ये तरीका है कि दोनों कण आपस में नहीं चिपकेंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं यदि कण आपस में नहीं चिपक रहे हैं तो हमारा जो एमओपी है वो असली है। ठीक इसका दूसरा तरीका है, इसको पानी में घोलने से इसको जो लाल कण है वो ऊपर में रहते हैं और जो सफेद कण है वो नीचे पानी में रहते हैं। इसको हम बहुत देर तक भी घोलेंगे यदि चम्मच के माध्यम से तो भी आसानी से नहीं घोलता, और जो लाल कण है वो ऊपर आते जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो पोटास है और सही है, असली है। इसी प्रकार एक और पोषक उर्वरक रहता है सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे SSP बोलते हैं, मार्टी राखड़ भी बोलते हैं। तो हम देखेंगे इसके परीक्षण के लिए, इसको यदि हम गर्म करेंगे तो यूरिया का जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो इसके दाने नहीं फूलते हैं। यदि दाने नहीं फूल रहे तो हम समझेंगे कि हमारा उर्वरक सही है, असली है।
0: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:35 हुए हैं, आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 6:40 पर सुनेगा रामचरितमानस, देश गान का प्रसारण होगा 6:50 पर। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोका का समय होगा 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:45 पर। फरमाइशी लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी का समय होगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे 10:10 पर। फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 11:00 से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का समय रहेगा शाम 5 बजे। पॉप टाइम हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है रक्तदान करें स्वयं स्वस्थ रहें किसी को जीवन दें, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। साथ ही सुनिएगा क्रम घटना चक्र, क्रम तरणों की पसंद। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है जिमीकंद की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभकारी। साथ ही सुनिएगा आज की नसीहत, माइकोराइजा एक लाभदायक जैव उर्वरक, खेत बचाओ अभियान। साथ ही आप सुन सकेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे रात 8:30 पर, साथ ही रात 10 बजे। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा दिल्ली केंद्र से रात्रि 9 बजे से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर विशेष कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा रायपुर केंद्र से रात्रि 9:25 से। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता का समय रहेगा 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस। कलाकार हैं मन्ना डे। संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

शिवजी की बारात में जाने के लिए देवताओं तथा दिग्पालों के समूह एकत्रित हुए। भगवान विष्णु ने विनोद में उन्हें शिवजी की वेशभूषा के प्रतिकूल बता दिया। इस पर शिवजी ने दूत भृंगी को भेजकर अपने गण बुलवाए। फिर तो ऐसी बारात सजी जिसे हिमवान की नगरी के बालक देखते ही जैसे जान बचाकर भाग चले। कैसे थे शिवजी के गण? कोई दुबला, कोई बहुत मोटा, कुछ भयंकर गहने पहने, तो किसी के हाथ में नरमुंड और पूरा शरीर ताजे रक्त में सना हुआ। कुछ के मुख गधे, कुत्ते तथा सुअर जैसे। ये सभी अनगिनत योगिनियों, प्रेत और पिशाचों के साथ चल रहे थे। जैसा दूल्हा वैसी बारात। इधर हिमवान ने अद्भुत ढंग से अपनी नगरी को सजाया था। मंडप ऐसा सुंदर जिसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। विवाह के अवसर पर जगत के सारे छोटे बड़े पर्वतों, वन, समुद्र और नदियों को न्योता भेजा गया था। ये सब अपने इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर उपस्थित हुए। बारात नगर के निकट आई तो नगर निवासी बन संवर कर नाना प्रकार के वाहन लेकर उसकी अगवानी करने चले।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है देश गान समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देश गान समोसे और में हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर चबित कर 55 मिनट हुए अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात और विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 277 रन बनाए, जबकि जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अदिति सिंह शर्मा अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ में टू स्टेट्स फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, तर्ज बनाई है शंकर एसॉन लॉय ने।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोनाली ठाकुर की आवाज में बागी फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने, तर्ज बनाई है मीत ब्रोस ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज में दबंग फिल्म का ये गीत, जिसे लेकर जली सेरवानी ने तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आस्किंग क्लिंटन सरोजी की आवाज में बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा सबीर अहमद, नीलेश मिश्रा ने, तर्ज बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आप सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज में लुटेरा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, तर्ज बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मिली नायर अमित त्रिवेदी की आवाज में काइपोचे फिल्म का ये गीत जिसे लिखा है सवानंद किरकिरे ने, तर्ज बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चितपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम छरोखा।

झरोका में मैं हूँ आपकी मित्र अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, उमस भरी गर्मी के बाद बारिश की पहली फुहार हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। धरती से निकली कोपले, हरे भरे पेड़ पौधे वर्षा ऋतु में खिल उठते हैं। बच्चे हो या बड़े, बारिश में भीगने का आनंद सभी को एक अलग ही तरह की ताजगी और ऊर्जा देता है। दोस्तों, किसानों के लिए मौसम वरदान है क्योंकि इसमें फसलों को पानी मिलता है। बच्चों की रंग बिरंगी छतरी से और भी सुंदरता बढ़ जाती है बारिश के मौसम की। दोस्तों, मुझे तो बारिश में आने वाली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू बहुत पसंद है और जगह जगह भरते बहते झरने प्रकृति की सुंदरता में तो चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, हर मौसम का अपना ही मजा है। बरसात का स्वागत तो हम बहुत ही खुशी से करते हैं, अब मानसून दस्तक देने ही वाला है। तैयार हो जाइए क्योंकि कुछ सुरक्षा सावधानी भी रखनी होगी हमें बरसात के मौसम में। दोस्तों, बाहर चलते समय बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मर या खुले तारों से सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। रबड़ के तले वाले जूते पहने जो आपको करंट से बचा सकते हैं। दोस्तों, बारिश में सड़क पर फिसलन होती है, इसलिए गाड़ी धीरे चलाएं, अचानक ब्रेक लगाने से बचें। साथ ही अपनी गाड़ी की अच्छे से मरम्मत करवा लें। दोस्तों, कूलर, गमलों या घर के आसपास पानी न जमा होने दें। शाम के समय मच्छरों से बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहने मच्छरदानी का उपयोग करें। दोस्तों, बारिश के मौसम में खान पान का ध्यान देना भी जरूरी होता है। बाहर का तला भुना मसालेदार खाना से बचें, हमेशा साफ उबला पानी पिएं और घर का बना ताजा भोजन ही करें। यदि आप बारिश में भीग जाते हैं तो घर आकर तुरंत नहा लें या सूखे तौलिए से शरीर को पोंछ लें ताकि फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके। दोस्तों, बरसात का मौसम प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। हम इसका सच्चे मन से स्वागत तभी कर पाएंगे जब हम सुरक्षा स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करेंगे। हर कदम पर सावधानी बरतकर ही हम इस सुहाने मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं। कार्यक्रम झरोका से अब अनुमति दीजिए अपनी मित्र अनुपमा को और बारिश के मौसम का मजा लीजिए इस गीत के साथ।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: संभावना है। बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:45

अभी आप सुने थे कृष्ण कुमार जल छत्री और साथी की आवाज में ये गीत। इस गीत के साथ ही लोकगीत का कार्यक्रम पाजे मांदर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:55 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दे आज के शेष कार्यक्रम के बारे में। 8:30 पर सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 9 बजे से। कार्यक्रम सुगम संगीत का समय होगा 10:10 पर। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।

0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का समय होगा शाम 5 बजे, टॉप टाइम सुनेगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवानी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है रक्तदान करें, स्वयं स्वस्थ रहें, किसी को जीवन दे, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। साथ ही सुनेगा क्रम घटना चक्र तरुणों की पसंद। फिल्म संगीत का पैनल ले सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है जिमीकंद की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभकारी। आज की नसीहत में सुनिएगा माइकोराइजा, एक लाभदायक जैव उर्वरक, खेत बचाओ अभियान। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। 11 फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत का पालन दे सकेंगे रात्रि 8:30 पर, साथ ही रात 10 बजे। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात 9 बजे से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर विशेष कार्यक्रम का अनुप्रसारण रायपुर केंद्र से किया जाएगा रात्रि 9:25 से। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजे हैं, अब समाचार होंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
8: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
7: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के

0: 520 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे. भारत इनोवेट्स 2026. भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार.
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 225,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा. ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं. अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था. हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया. उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं.
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं. सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा. और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया. इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा. फाइनल खेला जाएगा 21 जून को. और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा.
3: धन्यवाद मुनीश. देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है. लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है. पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है. अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया. पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं.
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने. विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की. केंद्र ने 225,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की. ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए. और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है. और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज. गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा. द हेडलाइंस. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी'स ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ. NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruturaj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपमा। ईमेल व पत्रों पर आधारित छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम लोकरंजनी में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम बहुत ही उत्साहित हैं, आपके स्नेह भरे हमें बहुत से ईमेल और पत्र प्राप्त हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आपके फरमाइशी पत्रों और ईमेल के साथ। हमें ईमेल सबसे पहला भेजा है बेलाडी बस्तर से शिव प्रसाद, देव प्रसाद, मोहित कुमार, देवदास, ओमीन, उत्तरा, प्रमिला, यमुना, जमुना कुमारी, अंजू, मंजू, युवती, देवदास। साथ ही और भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने इसी गीत की फरमाइश की है। स्वर है संतराम वर्मा का और लक्ष्मी शर्मा का। हमारे अगले फरमाइश करते हैं जिन्होंने हमें मेल किया है, ग्राम गुड़मर्रा पोस्ट सूर्यगांव तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद से। देवदास, रामावतार, अनिल कुमार, तरुण कुमार, सोनू, मोनू, ललेश्वरी देवदास, इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। पद्मा टॉकी चनेपा नगर से सुदर्शन सा, पल्लवी सा, प्रखर सा, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला, राजेंद्र शाह। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें मेल प्राप्त हुआ है। विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा साहू, हर्ष, कुमकुम साहू, योगेश्वरी साहू। छतवन जिला बलोदा बाजार से इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे और भी साथियों ने। पुनित राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह, पंकज सिंह सूर्यवंशी। कुछ पत्र हमें प्राप्त हुए हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति, रेयांश। बाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा। परसाटोला अंबागढ़ी चौकी से इसी गीत को सुनने की फरमाइश की है। ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी, कुमेंद्र मसिया, अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव से। रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनश, रेहान, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मंडी, सौरभ, शाइना, निवान। गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यशु, अंशु गुप्ता। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत। स्वर है संतराम वर्मा, लक्ष्मी शर्मा का।

इस गीत के बाद अगले गीत की फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं जिन्होंने हमें मेल किया है पलारी छत्तीसगढ़ से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, निशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी, गीतिका गुड़िया, कुस्मिता, अखिलेश, पीहू, लालिमा, साथ ही बलौदा बाजार से पुनीत, निर्मला, निहारिका, पंकज, सूर्यवंशी। साथ ही हमें और भी मित्रों के मेल प्राप्त हुए हैं, कोमा खान छत्तीसगढ़ से, प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी, प्रकाश यहीं से, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, लोरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से, कमलकांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, खमरिया बिलासपुर से, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। कुछ मित्रों ने हमें पत्र से अपनी फरमाइश भेजी है इसी गीत की। सिहावा पर्वत बेलरगांव से मिथलेश, मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, बेमेतरा से भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, चांदनी चौक गड़ी पंडरिया से पप्पू, छोटू सेन, लता, पूजा सेन, खुशी सेन, सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सनी, कोमल यादव, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव। साथ ही इसी गीत को और भी सुनना चाहते हैं जिन्होंने हमें पत्र भेजा है, छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू, खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, दुर्गापारा रायपुर से। ये सुनना चाहते हैं केदार यादव और साथी की आवाज़ में ये गीत।

आपके पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम लोक रंजनी में हम अगला मेल लेने जा रहे हैं हमारे इन दोस्तों का, जिनके नाम हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, चर डोगरी, पिपरिया जिला कबीरधाम से हमारे और भी साथियों ने मेल किया है, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया, जयकिशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका साहू, ये सभी मित्र सुनना चाहते हैं संगीता चौबे की आवाज में गीत। हमारे और भी मित्रों ने इसी गीत को पसंद किया है। चरौदा बार नवापारा से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला खुशबू, ज्योति ठाकुर, पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुखमानी बघेल, साहिल, भारती बघेल, खेरता बाजार से जितेंद्र दास मानिकपुरी, बिलऊदास, जयदास, देवेश, धनवंतरी बाई, मोतिम बाई मानिकपुरी, कुछ मित्रों ने इसी गीत के लिए हमें पत्र भेजा है। पाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक,

ईमेल और पत्रों पर आधारित छत्तीसगढ़ी लोकगीतों के फरमाइशी कार्यक्रम लोक रंजनी में हम आपके मेल को लेने जा रहे हैं दोस्तों। अगले हमारे फरमाइश करता है रानीगांव नगरी जिला धमतरी से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू, नवागांव बालो से चंद्रभान हिरवानी, फूलेंद्र नेमेंद्र हिरवानी। साथ ही हमारे कुछ मित्रों ने हमें पत्र भेजे हैं, जिनवानी दुर्ग से सुरीत, रमेश, तारा, विद्या, जितेंद्र, सुनीता, हीरेंद्र, चंद्रहास, संजीव, त्रिलोक साहू, रंजीत सिंह, बेमित्रा से रोहिणी, डागेश्वरी, कुलाशा देवी, देवव्रत, राघवेंद्र राज, हेमंत कुमार साहू, बेबी विधि, दीपिका साहू, कविता सृष्टि साहू। साथ ही हमारे और भी मित्रों ने हमें इसी गीत के लिए पत्र भेजा है, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश, अनुराग कश्यप, भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री।

वो सुधा छत्तीसगढ़ से भगवानी संतोषी गजेंद्र चिराग चंद्र प्रकाश नेहा सेन खट्टी से सुभाष शर्मा छाया शर्मा गरिमा तिवारी करण तिवारी हेमलता तिवारी मोती तिवारी अंजू तिवारी आप सभी सुनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम लोकरंजनी में अगले गीत की फरमाइश करने वाले हमारे साथी हैं, जिन्होंने किया है इंद्रनगर बवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश देवांगन। ये सुनना चाहते हैं पंचराम मिर्जा की आवाज में गीत। और भी साथियों ने इसी गीत को सुनने के लिए हमें पत्र भेजा है भिलाई से। सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ, सॉरी शुभम जैन, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी भाटापारा से मुखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, अनूपपुर से जयमंत्री, अंजलि, रुद्राणी, कृष्णा, सावरगांव से रघुनाथ, पुष्पा। साथ ही इस गीत को सुनना चाहते हैं पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोनिश, अनुराग कश्यप। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

बस्तर ले मला हूँ तोर पर चिकली माला पुंदरी रायगढ़ देवो नांग मुरी कर धन पैजन यमुंदरी बस्तर ले मैला हूँ तोर पर चिकली माला पुंदरी रायगढ़ ले वो

दस्तक दे रहा है मौसम है बारिश का। चलिए करते हैं हम मानसून का स्वागत, लगाते हैं नन्हे पौधे और करते हैं धरती को हरा भरा। इसी आशा के साथ अब अनुमति दीजिए अपने मित्र अनुपमा को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोक रंजनी। भेजते रहिए हमें मेल और पत्र। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजे है। अविवेक भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना शान की आवाज में, गीत को लिखा योगेश ने, संगीत है प्रवीण कुंवर का।

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रिबूट, इस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का गाना कनिका कपूर की आवाज, कुमार के बोल हैं और अर्जुन का संगीत है।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काक की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना। हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

एक पहेली लीला, ये फिल्म का नाम है। मीत ब्रदर्स अनजान और कृष्णा की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन ग्रैंसी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है।
3: मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है।
2: क्या तकते हो?
3: जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को 30 मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण हो। जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस सवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें, उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बम्बई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पॉर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साए में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थी। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा शशि। वारे जमाने। कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह, क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी और मैं कह रहा था जी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर, मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा हशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीतकर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशर साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे रही थी जनाब, उससे तो मूसलाधार आंसू बह रहे थे क्योंकि रिफ्लेक्टरों की रोशनी अब काफी तेज हो चुकी थी। खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे, बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
5: चंगेज खां के शेर दिल सिपाहियों, आसमान की मुकद्दस रूहों ने चंगेज खां को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खां के वफादार रहे हो, इस मुतबर्रक कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरज़ू पूरी हो।
0: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
1: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्राव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
0: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
1: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता आप्टे के मुकाबले में कर चुका हूं। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूं तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकिचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा, मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा, भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
6: मेरी बेटी कहां है मेरी बेटी?
7: बदतमीज, जूता खराब कर दिया, साफ करो।
6: मेरी बेटी कहाँ?
7: बैठे कौन सा बेटे?
6: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
7: हमें कुछ याद नहीं।
6: याद करो, प्लीज याद करो।
7: ये लो, पहचाना इसी कन्नी को? ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
6: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
7: रॉबर्ट सेठ तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे ही आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूं और तुम मेरे कदमों में।
6: मुझे सिर्फ इतना बतला दो मेरी बेटी कहाँ है।
7: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
6: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
7: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
1: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई, छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूं, जरा सुनिए। आजमूदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में एसएम यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायती नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर वही खामिन ललिता बाई का है? और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: जीवन की फिल्म यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। ना जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे। जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जौक है, क्या शौक है, 100 मर्तबा देखा फिर भी ये कहूँ जलवाए जाना नहीं देखा। मैंने भी बहुत स्वांग भरे हैं, फिल्म लाइन में आया तो ओकेदार था, चला तो जीवन बन गया, और फिर कुछ ऐसी ऐसी हरकतें की कि किस्मत ने प्रोड्यूसरों के जरिए मुझे नारद ही बना दिया। कोई 35 फिल्मों में मैंने नारद का काम किया। नारद झगड़ा लगाने वाला नहीं, झगड़े को मिटाने वाला होता है। चोर से ये कहना चोरी कर, और चौकीदार से कहना हे भाई होशियार रहना, बताइए ये कोई बुरी बात है? चलिए, मुझे इस बात का संतोष जरूर है कि मैंने नारायण की रट इतनी बार लगाई है, करोड़ों कानों में इतनी बार नारायण शब्द का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते। मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए, और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।
2: हो चले शंकर बाबा, हो के बैल पे सवार करके अनोखा सिंगार चले।

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता है। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो हाथ मैनेजर पंजर ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: हाथी हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चब बे जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, हाथ धोके दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई
1: कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
2: नहीं नहीं।
1: मगर कौन सी परी भैया?
2: धोत।
1: अरे वही बसंती।
2: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
1: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद हो सकूंगा। शायद बाज़ दफ़े नौकरों ने ही कह दिया हो कि साहब कह रहे हैं साहब घर में नहीं हैं। खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।

0: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब है?
1: अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
0: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
1: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
0: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
1: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
0: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
2: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?
3: जीवन मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे और वे कश्मीर को कभी भूल भी नहीं पाए।
4: कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ। महाराज अमर सिंह के राज में मेरे पिताजी वजीर वजारत के ओहदे पर तैनात थे और गिलगित के गवर्नर भी रह चुके थे। शायद कोई कह दे पिदरम सुल्तान बूद। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती है, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।

0: हो।
1: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष हैं, वो बुलंदी हैं, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
2: दोस्तों, बात बाहर ना जाए। मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं, रसोई घर में और खाने की टेबल पर इनका होना बहुत जरूरी है, और इनका भाव भी कभी 10 नए पैसे इधर और कभी 5 नए पैसे उधर से ज्यादा नहीं होता। हम कैरेक्टर आर्टिस्ट रसदार मौसमी आम, यह खुशबूदार खरपूसे नहीं कि 20 रुपए दर्जन से गिरकर 1 रुपए के 20-20 बिकने लग जाएं। कहने का मतलब क्या है आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर शर्त सिर्फ इतनी है भाइयों, बात बाहर ना जाए वरना।
3: अरे तू

0: अधिपदेव।
1: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन तथा शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून 1 से 2 दिन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दस्तक दे देगा। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यही स्थिति अगले 5 दिनों तक प्रदेश में बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि 11 जून से मेघ गर्जन की गतिविधि बढ़ने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक महिला आरक्षक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार खुर्सीडीह बोरई मार्ग पर एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में महिला आरक्षक हेमलता ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। और बिलासपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल हुई केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10 बजे है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 10:10 पर सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। पॉप टाइम हम आपके लिए लेकर आएंगे 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है रक्तदान करें स्वयं स्वस्थ रहें किसी को जीवन दे, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून। साथ ही सुनेगा क्रम घटना चक्र क्रम तरुणों की पसंद। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे।

किसान भाई के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा शाम 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है जिमीकंद की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभकारी। साथ ही सुनेगा आज की नसीहत में माइक्रोराजा एक लाभदायक जैव उर्वरक खेत बचाओ अभियान। साथ ही सुनेगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम, गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:20 पर, फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे 8:30 पर, साथ ही 10:00। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर विशेष कार्यक्रम का अनुप्रसारण किया जाएगा रायपुर केंद्र से 9:25 से। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: पुस्तकों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाई ये गजल, जिसे लिखा है मिर्जा गालिब ने, तर्ज बनाई है हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल, जिसे लिखा आमिक हनफी ने, तर्ज बनाई है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई एक गजल, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, तर्ज बनाई है जगजीत सिंह ने।

जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है सिहावा पर्वत अंचल बेलरगांव से मिथिलेश मधु, हिमांशु, अंकित देवांगन, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, विजेंद्र विजकांत सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा, दामिनी वर्मा, आदर्श नगर मनोट से राज शर्मा, मीना योगेश मंडी, सौरभ शायना, निमान शर्मा, तापुर मोरवा से कारी राय, मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली साकरा से जयंत कुमार, परागी। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में तेरे नाम फिल्म से, जैसे लिखा सन्नी ने तर्जमनाई हिमेश रेशमिया ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की वौशाला परा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यशु अंजु गुप्ता, जतुका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सबाना आलम, चांदनी नास, सिराजपुर, गणेशपुर से हीना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम, नाच परवीन, बलचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा, मोतीलाल साहू, बेमतरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र विचकांत सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। सुनते आप सबकी पसंद का ही गीत।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संडली।
6: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपको सुनवाने जा रहे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में बरसात की रात फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा साहिर ने तर्ज बनाई है रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं डिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मीका, बलविंदर बैरक जैतक मीका बैरक, धर सीवा से छेदूलाल यादव, सीता अर्चना, अरुणा अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा रायपुर से चन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका नामिका, बलदाऊ यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, कुल्हारी काट पंडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू मोहनीश, अनुराग कश्यप। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अभी हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमित कुमार अलका याग्निक की आवाज में नसीहे फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है भाटापारा वतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जाविंद्र कुमार वर्मा, जिलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण, विमला, मास्टर हर्ष, खुशी, शुभम बाधवानी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल पाटिल, औरंगाबाद से। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है राशि शीतल ने। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी सुषमा श्रेष्ठा की आवाज में हम किसी से कम नहीं फिल्म से जिसे लिखा मजरू ने तर्ज बनाई है आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं इंद्रानगर से शेख अब्दुल सलीम बेगम परवीन बानो अब्दुल जमीर मोहम्मद अली आसिफ नईम राजा लाल टंकी चौक रायगढ़ से चैतन दास शीतल सुशीला साहित्या मनोज कुमार अंकित साथ ही इस गीत को सुनने की फरमाइश की है चतुका किशनपुर से आलम दिलकर सबाना रिजवान इमरान आलम चांदनी सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजे है। अब विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।
2: रंग तरंग।
1: रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हूं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। इस मिश्र संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ अलग अलग तरह के गीत, अलग अलग गायकों द्वारा गाए गए। लीजिए पहला गीत सुनवा रहे हैं आपको लकी अली की आवाज, शब्द रचना भी इन्हीं की और संगीत भी लकी अली का। एल्बम का नाम अक्स।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को, डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

आइए सिफर एल्बम का गीत आपको सुनवाते हैं लकी अली की आवाज में। इससे संगीत से सजाया है लकी अली ने और लिखा है सईद असलम ने।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं पॉप एल्बम का ये गीत, आवाज गुल सक्सेना की और किरण ने साथ दिया है। गीत और संगीत किरण, प्रगति तोमर और सौरभ ठाकुर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: आवाज़ों में अभी आपने सुना इन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत और रचना भी थी इन्हीं की। और आपको अगला गीत सुनवाएंगे, पहले सुनिए ये संदेश।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की,
2: श्रृंगार। 11:55 हुए हैं, अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। देश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, EKYC और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल मंत्रालय में सीएम हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासी टोल फ्री नंबर 1076 पर अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ ही सुझाव भी दे सकेंगे। इसके अलावा शासन की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में फीडबैक साझा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन सेवा को व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया है। इसमें राज्य शासन के 42 विभागों के लगभग 8,000 अधिकारी जुड़े हुए हैं। वहीं 1,195 श्रेणियों में निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों और दलहन तिलहन मक्का कोदो कुटकी रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार द्वारा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर में आयोजित 16 दिवसीय कला प्रशिक्षण शिविर आकार का कल रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर में प्रदेश भर के 1,281 प्रतिभागियों ने 16 कला विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, कला और लोक परंपराओं से जोड़ना समय की आवश्यकता है। अंत में मुख्य

समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और धान के स्थान पर दलहन तिलहन जैसी अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता देगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ. जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। गीत सिर्फ शब्दों और सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं की वो डोर है जो दिल से दिल को जोड़ देती है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी याद बनकर आंखों में उतर आता है। आइए अब सुनते हैं कुछ ऐसे खूबसूरत नगमे जिनकी शुरुआत ही गीत शब्द से होती है, या फिर इन गीतों में कहीं ना कहीं गीत ये शब्द शामिल है। आगाज कर रहे हैं लाल पत्थर फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार ने, देव कोहली की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम, जिसमें हम गीत शब्द को लेकर कुछ गीत सुनवा रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन रेखा इस फिल्म का गीत, जिसे गाया है चंद्रानी मुखर्जी ने, देव कोहली की रचना, जगदीश जे का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं 1948 की फिल्म मेला का गीत मुकेश का स्वर. मुकेश के स्वर, शकील बदायूनी की रचना और नौशाद अली का संगीत.

0: सुरैया की आवाज में आपने सुना दास्तां फिल्म का ये गीत, रचना शकील बदायूनी की थी और नौशाद अली का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए इंतकाम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम गीत। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

साथियों, इस गीत की हम आपको सिर्फ झलक सुनवा पाए हैं क्योंकि कार्यक्रम का समय हो चला है। फिर किसी दिन किसी कार्यक्रम में आपको इस गीत को पूरा सुनवाया जाएगा। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होगा हमारा कार्यक्रम सुरीला सफर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर, जो आज आप तय करेंगे अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम लाते हैं एक इबारत या फिर टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़कर आपको कुछ शब्दों को या फिर किसी पंक्ति को पढ़कर आपको पता करना होता है कि कौन से गीत आज के कार्यक्रम में बजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कन ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात ही बदल दी और कहा, आप यहां आई किस लिए हैं, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चलें। देखो, तुमने वादा किया था कि जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है, तो चलोगी ना? मैंने हंसकर कहा, कौन मैं? तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं। और मैं वहां से भाग निकली। तो क्या अब आपके पास वो भावनाएं पहुंची हैं? जब आपकी टिप्पणियां देखते हैं तो मन में लगता है कहीं हमारी भावनाएं पहुंची नहीं है या फिर कुछ कमी रह गई है। तो इसीलिए सोचा एक बार पढ़कर सुनाने के बाद हो सकता है कि आप इन्हें पहचान ले, समझ ले, हमारी भावनाएं समझ ले। तो चलिए इसी के साथ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, पहले कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और हाँ, आज के कार्यक्रम में जो गीत हैं उनमें एक और खास बात है, वो भी आपको पहचाननी है। जैसे कि आप लोग हमेशा कहते हैं मैं गूगली डालती हूँ, तो गूगली डाली ही है, अब आपको पहचाननी है क्या है। लीजिए आपको सुनवाते हैं मिस्टर नटवर लाल फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन और

मास्टर रवि की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। तब तक सोचिएगा सारे गीतों में क्या बात कॉमन है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

तो अगर अब मैं ये कहूँ कि आज तो आप लोगों ने गुगली डाल दी है। हाँ, कमेंट्स पे कमेंट्स आते जा रहे हैं और आप लोगों ने सच में जो पहचाना है वो बिल्कुल सही है। किसी ने लिखा है, गानों के बीच में या शुरुआत में कुछ वाक्यांश या नायक नायिका जिस पर ये गाना फिल्माया गया है उनकी आवाज़ है। जी हाँ, ये बात सही है। शायद आज किसी ने लिखा है, शायद आज के सब गानों में संवाद है। जी हाँ, ये भी सही है। किसी ने लिखा है, शायद वार्तालाप नुमा गाने पेश किए जाएंगे। बिल्कुल सही। किसी ने कहा, सभी को मैं अभी अभी जुड़ा हूँ, इबारत भी नहीं पढ़ी है, लेकिन आपने जिन बातों का जिक्र किया है उनसे ऐसा लगता है कि आज के गानों में जो आम बात है वो ये है कि गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाज़ें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए, कुछ जो टिप्पणियां आई हैं हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां करते ही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहाँ दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों की मासूमियत को दर्शाती है जहाँ आँखों की भाषा और धड़कनों की सरगम शब्दों से ज़्यादा बोल जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहला प्यार जब होता है तो हमें लगता पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और कैसे आगे बढ़ा जाए। जी हाँ, आपकी जो टिप्पणियाँ हैं वो भी यही सब कह रही हैं। बहरहाल, सुनिए सिलसिला फिल्म का गीत, अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाज़ों में, जावेद अख्तर के बोल, शिवहरी का संगीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए अब आपको बताते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में। एक साथी ने लिखा है, मुलाकातें प्रेम में कितनी जरूरी है ये तो प्रेम करने वाले ही जानते हैं। जब प्रेम होता है तो हम बहुत कुछ समझ लेते हैं। थोड़ा कम बोलना और हर बात को समझ लेने की शुरुआत प्रेम से ही तो होती है, पर प्रेम का हर पल मूल्यवान है। यही पल है जो हसीन है, खुशनुमा है, इन पलों को जाया ना होने दें, क्योंकि जो भी है बस यही एक पल है। किसी ने लिखा है, आज की इश्किया इबारती इमरती में मिठास ही मिठास है, जहां प्रियतम और प्रेयसी दोनों की मोहब्बत का इजहार, इकरार, तकरार और स्वीकार का जिक्र है। कुछ शरारतें मोहब्बत के लिए जरूरी हैं, जिनका खूबसूरती से समावेश किया गया है। क्या बात है, मतलब आपको यदि इस इबारत से समझ आ गया है कि हाँ आज हम कौन से गीत सुनवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। आइए अब आपको ये अगला गीत सुनवाते हैं, और शब्द तो जैसे कि आपने पहचान ही लिए हैं, तो लीजिए सुनिए ये गीत कल आज और कल इस फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें। नीरज ने इस गीत को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत। आप यहाँ आए किस लिए, तो यही वो शब्द हैं जो आपको पहचानने थे।

0: बताओ।
1: काम सीधा साधा है।
0: बोलो बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा, शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी और तुमसे?
1: शादी का इरादा है।
0: ना, शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: चले जरा आप मुस्कुराइए।
1: आप यहाँ आए किस लिए?
0: आपने बुलाया किस लिए?
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बता।

0: मैंने कहा काम तो बताइए।
1: काम? हाँ। काम सीधा साधा है, लेना एक वादा है।
0: अच्छा,

0: muskedai.
1: हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए,
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए ना।

0: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल रहा है, लेकिन इजहार कैसे करें बहुत मुश्किल थी। मैं आज की पीढ़ी को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि उनके ज़माने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं ज़िंदगी के नए सफ़र में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा ज़रूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो। जब आप रिफ्रेश करेंगे उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफ़र की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र सिंह के बोल, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कने ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत, फिल्म हम से आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था, जो आज तक धर्म पत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: कौन? मैं?
1: हाँ तुम।
0: बस तुम?
1: ओफो। तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
2: अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

धरती पर जितने भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझें, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है। इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
4: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, ये सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूँ कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
5: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि एलपीजी कनेक्शनों को पीएनजी कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं की जरा याद करो
3: बहु बेटी फिल्म का गीत। अब सुनिए, आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना।

0: दौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ, बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: कैसा होता है ना कि जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती है, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो जो महफिल होती ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल, और वो कहते हैं ना जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है, एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है ना?
0: और है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल,
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज नया, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा के हम बोर हो गए तो उसमें हमें एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है। यानी उसको अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है,
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार
1: होते हैं।
0: पुराना जमाना याद कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है, इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना?
1: समझ रही हूँ मैं आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है या संवाद पीछे छूटता जा रहा है
1: और किस तरह का संवाद होता है,
0: है ना? हाँ
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार,
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिखकर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है, है ना? और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए, यानी

0: यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का। और अब क्या करें
1: जी, अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत बातें हो गई हैं
0: जी, सुनते हैं गीत।
1: ठीक।

0: तो नेहा मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊं।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं, इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पर वो बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यही आपको थोड़ा सा रोकूंगी और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली हूँ
0: जी।
1: अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने एक ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते। तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय लेकिन वो काम नहीं आ पाया, तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया है तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
0: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी
1: नहीं हो पाई
0: तो हमें बहुत बुरा लगता है।
1: बिल्कुल।
0: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
1: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लगभग सभी धर्म इसे

0: मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
1: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी, तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये एक अच्छा कार्य था,
1: बहुत अच्छा कार्य किया है, और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है, और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
0: एक साथी लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई, धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।

0: सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूं कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती हैं। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: कर सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख सके। और जब भी खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियां और साड़ी में जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कार्य के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है। जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है और जरीयुक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है। यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
0: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
1: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां हैं।
0: क्या बात है।
1: मुझे शौक है तो पहनती हूँ और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है। और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
0: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
1: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
0: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: और जैसे
0: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
1: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये हमारी दुखती रख पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो हो हो लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रख पर हाथ रख दिया है, हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा,
0: बहुत अच्छी बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल,
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना निहा।
1: हाँ।
0: कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल, और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार में उपलब्ध है।
1: हाँ, सच कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है।
1: हाँ।
0: कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना खाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: तो जब हमें बहुत तेज भूख लगती है ना उसमें, उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में परोसे गए अन्न के पीछे छिपी मेहनत को समझेंगे तब शिकायतें अपने आप कम हो जाएंगी। आखिरकार जिस घर में भोजन के प्रति आदर होता है वहाँ संतोष, प्रेम और सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही और एक इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखी है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हर घर की समस्या है, हर घर में सदस्य भले ही चार हो लेकिन उनके खाने के पसंद नापसंद की सूची इतनी लंबी होती है कि गृहिणी अक्सर असमंजस में पड़ जाती है। कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को फीका, कोई सब्जी नहीं खाता तो कोई दाल देखकर मुंह बनाता है। ऐसे में रोजाना यह तय किया जाना कि क्या बनाया जाए, ये बात किसी चुनौती से कम नहीं होती। फिर भी एक गृहिणी अपने प्रेम धैर्य और समर्पण से सबकी पसंद का ख्याल रखती है। इसलिए परिवार के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे भोजन बनाने में लगी मेहनत का सम्मान करें और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए, तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है।
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी।
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीट बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहाकर निकलते।
1: मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे। एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं। आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई। ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती। श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से। अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी, मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है,
0: डेवलप हो जाते हैं।
1: हाँ, वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है, उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं,
0: उसे करेला भी दीजिए,
1: उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए। जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी।
0: और हम ऐसे कहते हैं कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हर
0: आप जो खाते
1: थोड़ी थोड़ी,
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद कितना बढ़ा।

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरी नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने समझदार इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना चाहिए।
0: हाँ, तो घर की जो गृहिणियां हैं वो बड़ी खुश होगी।
1: हाँ, अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़ दिया
0: संवाद।
1: वही
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल के उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है। सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना?
1: तो जरूरत ये है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा। तो ऐसे तत्व मिले होते हैं इसलिए।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी,

0: और वो बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डला होता है उसमें और उसमें टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब आप उन्हें चखाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये चीजें कैसी लगती हैं।
0: तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे। और दो सहेली ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको। तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हदबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में चार लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है, घर के नखरे भले ही हजारों लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है,
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है तो हर घर की समस्या है, घर में लोग चार खाने के नखरे हजार, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत है, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहिणियों को बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं। कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: हाँ सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा, जब हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से संवाद रखेंगे तभी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले, ऐसा नहीं। बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वह है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है। संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो, जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए, बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है, उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए, उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है और कभी कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या फिर खाना तैयार है कि नहीं, हम आए क्या डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से इन्हें मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया। और वो गृहणियां हैं जो वो भी मैसेज में लिख देती है हाँ हाँ खाना रेडी है आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें,
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से, व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे।

0: करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को एक दो घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें। बचे हुए तेल में पंचफोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें। इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और दो कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसे।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: चाहिए। बहुत टेस्टी हो गया ना। एक हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है। पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी, ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथ ही एक साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है। बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे। बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे। मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, पांच फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले। अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले। अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले। पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे। इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है। पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती। मिर्च, लहसुन, हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं। और आप क्या करें,
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़े मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें।
1: तो यानी कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में।
0: हाँ।
1: तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख पाता
0: है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई
1: रेडियो की तरफ,
2: और दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा
1: जी रेडियो से और आकाशवाणी से, और विविध भारती से रिश्ता है ही।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी, तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं, बताइए कि कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था
1: जी।
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी।
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं
1: जी जी जी।
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहाँ मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे,
1: गजब,
2: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था
1: जी।
2: तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है
1: जी जी।
2: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है, एक आदमी है फिराक गोरखपुरी जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है
1: जी,
2: अकबर इलाहाबादी जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है, सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं। तो शायद ये मैं आज बता रहा हूँ, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था
3: जी।
2: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है तो वो परिवेश का असर क्या होता है, एक असर होता है परिवार का। तो मेरे परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
3: अच्छा,
2: मैं टिपिकल जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़।

0: दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था, लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर दूर से रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है वो भी चीजें गढ़ता है, तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूँ।
1: जी जी, क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए चार पांच में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी परी के वरदान।
1: जी,
0: ढाई पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब आठ में पहुंचा तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर लाल सक्सेना पराग के संपादक थे, मैंने उनको तीन पेज की चिट्ठी लिखी, ढाई पेज की कहानी
1: और
0: तीन पेज की चिट्ठी
1: सर्वेश्वर जी
0: और की। हाँ, उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे, आपका क्या जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा, और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने लिख डाला। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया, वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे वो मेरी माँ के नाम से आते थे या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई। तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है, मैंने कहा नहीं, लौटाई दी, बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मेरे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने इतनी कम कक्षा में तुम पढ़ते थे और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ, तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है,
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूँ, तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना तो जब मुझे भेजना तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूँ जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात है।
0: तो वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है, और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है, हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने दें, पनपने दें, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर।
0: नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पे कानूनी कार्रवाई होती है। बोले अच्छा, ये बताओ ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या। तो मैंने कहा नहीं नहीं, लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी, उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूँ उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा तो कैसे जीवन चलेगा,
1: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे
0: चलेगी। तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा। सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए अपने को एक्सप्रेस करते करते,
1: जी जी,
0: वो एक गवैया बन जाए,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात
1: जी। तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक है, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। ख़ास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
0: तीन लाइनों में बात कहता हूँ कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और वो मुझे मिला नहीं।
1: अच्छा।
0: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक।
1: अच्छा।
0: शिवा मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता, तो वो कहानी छप गई। तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवमयंक कौन है जो पोस्टमैन है, मैंने कहा मैं हूँ। तो बोला आई कार्ड लाओ। तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो, मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो, कहा। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है, मैंने कहा वो भी मैं हूँ। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मेहनतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
1: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक।
0: जो कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं। तो वो जो फूटन है वो कब हुई कैसे हुई मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है तो किसी को दिखाना नहीं, फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी
1: जी।
0: ये 80 इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही, छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूँ, लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा के वो रख पाऊं। फिर बाद की जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
1: जी, जी जी, तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
0: संग्रह वाली कविता एक
1: दो लाइन सुना,
0: एक कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूँ, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है, इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी
1: जी,
0: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी तो मैंने चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी,
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी, आप अगर सुनाए हमारे को तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: ओह गजब।
0: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंद और सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपके गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहाँ सांस ले रहा था, वहाँ कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी।
1: तो
0: दुष्यंत कुमार साये में धूप उनकी
1: साये में धूप
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग लिखता था तो व्यंग में एक खूबी होती थी, व्यंग में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग बोलते हैं, व्यंग कहते हैं, व्यंग करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
0: अनकहा कुछ
1: अनकहा, तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर,
0: क्या बात,
1: उदासी बाल खोले सो रही है।
0: वाह वाह वाह।
1: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी
0: जी, जी,
1: तो हम
0: जी।
1: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे
0: जी,
1: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं
0: जी। तो कोई शेर या
1: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
1: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुवादित हुआ, इसके बारे में बताइए, इसकी क्या कहानी है।
1: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
0: जनसत्ता के संपादक थे,
1: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा, तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से
0: जी,
1: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं
0: जी।
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं
0: जी।
1: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
0: अच्छा अच्छा।
1: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
0: जी जी।
1: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
0: जी, जी।
1: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: इसका तो मतलब कि दूसरा आदमी उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
0: जी जी।
1: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
0: क्या बात है।
1: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
0: जी।
1: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी। हाँ। उनका आशीष था।
0: जी।
1: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था।
0: जी।
1: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने काम किया।
0: कहां पर था? किस?
1: वेदा कुंभा थिएटर में।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
1: जी, 9 भाषाओं में अब तक
0: मराठी में
1: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें।
0: जी।
1: इसकी और तो, कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
0: लोई नामकरण कैसे,
1: कबीर की पत्नी है उनका नाम है।
0: जी, बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
0: तुम घना साया। साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
1: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
0: जी, क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी,
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा।
1: दोनों आंखें खुली रखता हूँ तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूँ लेकिन पूरा प्रदेश से नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई, तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है। बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है? तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, एक ऐसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई, उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता, तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20-30 ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
0: क्या बात है, अगर 4 लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
1: तो एक कविता है आंसू की खबर।
0: जी सुनाए।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
0: क्या बात है।
1: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है, गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
0: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
1: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है, 3 दिन, 3 बच्चे, एक माँ, एक खबर।
0: ओहो, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।
1: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं? हाँ। पान खाएं सैया हमार।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहाँ की यादें ताज़ा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है?
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहां आपका बचपन,
1: क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी क्या बात है,
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: पहुंचे? पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है, मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
1: नहीं नहीं, यहाँ सकारात्मक है। हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कर उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम लगाने आए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ
0: सृजन करने आए हैं। जी जी।
1: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास। तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
0: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे?
1: पहली बार देखिए मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी, मैं एकदम गाँव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फिर

0: रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
1: जी
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा,
1: क्या
0: न्यूज़
1: बात
0: एडिटर
1: है।
0: रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो एक टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी।
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
1: जी।
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप
0: बहुत जरूरी
1: क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: कविता माने कविता नहीं रही
1: जी, जी।
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है
1: हाँ।
0: तो वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है, रचनात्मकता?
0: बहुत अच्छा प्रभाव डाला है, बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं। अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो खटमल मच्छर सब आएंगे।
1: बिल्कुल
0: ठीक है,
1: सही
0: तो
1: बात
0: आप वो जाली लगा दीजिए, वही सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा
1: जी। जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपका जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा, तो आप उसको बिल्कुल।

0: ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफनगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये मेंढारी, फोकली महुआ, करमडीहा, प्रेमनगर, नवापारा, फुलवार, शिवपुर, चिनिया, नीलकंठपुर, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, अखोरा, जवाखाण के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये सकालो, किशुनपुर, गंगरी, कुल्हाड़ी, कंचनपुर, पड़ोली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, सायर, कुमडेवा, लक्ष्मणगढ़, कुदरबसवार, केदमा, जगन्नाथपुर, ढोढ़ागांव, कठबुड़ा, शिवनाथपुर, घासीडी, दातीढाप, गढ़गांव, बैरडांड, चोरकी पानी, कंडराजा, पेंट के वन क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चराईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, चट्टानपारा, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये लुटान, पुरुंगा, बनहर, औरानारा, करोंधा, जिगड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के करतला में हाथियों की कुल संख्या 13 है। ये सलियाभाठा, भेलवाटार, सर्दूकला, सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, पसान और जडगा में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये मड़ई, कोदवारी, भूडू पानी, कठमोरगा, लालपुर, परला, चोटिया, कापानवापारा, खड़पड़ी, बनिया, झुनकीडी, बांधापारा, कुकरी, कादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 71 है। ये बंगुरसिया, जुनवानी, कशडोल, बुलेकेरा, चिमटा पानी, गया, कटाई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये तालदादर, पकरीद, नवागांव, कोठारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

ये था प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए सुनिए हमारे आज के केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद संध्या 5:10 पर सुनिएगा पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी का समय होगा संध्या 5:30 पर, जिसमें आज के बाद का विषय होगा रक्तदान करें, स्वयं स्वस्थ रहें, किसी को जीवन दें, विश्व रक्तदाता दिवस, क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा संध्या 6:00 और छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 6:10 पर। कार्यक्रम फिल्म संगीत के समय होगा संध्या 6:20 पर, 6:45 पर सुनिएगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार। कार्यक्रम फिल्म संगीत के समय होगा संध्या 7:00 और 7:20 पर सुनिएगा कृषक बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल, जिसमें आज की बात का विषय होगा जिमीकंद की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभकारी। आज की नसीहत में माइकोराइजा एक लाभदायक जैव उर्वरक, खेत बचाओ अभियान। इसके अलावा आज का टीप कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 8:20 पर और कार्यक्रम फिल्म संगीत का समय होगा 8:30 पर। समाचार संध्या रात्रि 8:45 पर रिले होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम के साथ बने रहेंगे रात्रि 9:00 और 9:25 पर सुनेगा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। कार्यक्रम फिल्म संगीत रात्रि 10:00 और गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10:30 पर। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार क्रमशः अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 11:00 और 11:05 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

0: धर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुमी श्वेता सेट्टी की आवाज में बिद्दू की लिखी हुई गीत, राजेश जौहरी के संगीत निर्देशन में।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम का गीत दीजिए, सुनिए कैलाश खेर के स्वर में उन्हीं की लिखी हुई गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में।
2: मोहे ऐसी लागी

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम में ये सुनते हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में ललित सेन की लिखी हुई गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में।

इसी के साथ पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और आज के युवाड़ी कार्यक्रम की होस्ट रिशा यादव। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के बीच। कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दिन हमारे आसपास ऐसे अनगिनत लोग होते हैं जो किसी न किसी की मदद करके दुनिया को बेहतर बना देते हैं। कोई भूखे को भोजन देता है, कोई ज़रूरतमंद को की आर्थिक सहायता करता है और कोई अपने ज्ञान से दूसरों का मार्गदर्शन करता है। लेकिन इन सभी नेक कार्यों के बीच एक ऐसा दान भी है जो सीधे किसी को नया जीवन दे सकता है, वो है रक्तदान। सोचिए, आपके शरीर का थोड़ा सा रक्त किसी बच्चे की मुस्कान लौटा सकता है, किसी माँ की ज़िंदगी बचा सकता है या किसी घायल व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। यही वजह है कि रक्तदान को सिर्फ दान ही नहीं बल्कि जीवन दान कहा जाता है। दोस्तों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक इंसान के खून का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं बन पाया है। इसका मतलब है कि जब भी किसी मरीज को रक्त की ज़रूरत होती है तो वो किसी दूसरे इंसान के रक्तदान पर ही निर्भर रहता है। इसलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। बहुत से लोगों में ये थिंकिंग होती है कि ब्लड डोनेट से बॉडी में वीकनेस आती है, हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। डॉक्टरों के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में इतना ब्लड होता है कि वो आसानी से रक्तदान कर सकता है। ब्लड डोनेट के बाद कुछ ही दिनों में बॉडी में ब्लड फिर से बनने लगते हैं, इसलिए रक्तदान करने से कोई स्थायी कमजोरी नहीं आती। सड़क दुर्घटना, बड़ी सर्जरी, प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव, कैंसर, थैलेसीमिया और कई गंभीर बीमारियों में मरीजों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। कोई रक्तदाता रक्तदान कर उनकी जान बचा सकते हैं। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी फरिश्ते से कम नहीं होता। दोस्तों, रक्तदान करने से रक्तदाता को भी इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। उनके शरीर में नए रक्त बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इससे शरीर की

क्षमता बेहतर बनी रहती है। रक्तदान से पहले कंप्लीट चेकअप होता है जिससे व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की सही स्थिति की जानकारी मिल सके। किसी भी व्यक्ति में अगर हीमोग्लोबिन सामान्य से कम हो तो उसे रक्तदान करने नहीं दिया जाता है। आज भी हमारे समाज में रक्तदान को लेकर कई गलत धारणाएं फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ब्लड डोनेट से वजन कम हो जाता है, हमेशा के लिए कमजोरी आ जाती है, जबकि चिकित्सा विज्ञान इन मिथ्यों को गलत मानती है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति डॉक्टर की सलाह व देख रेख में ब्लड डोनेट करता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों, युवाओं की भूमिका रक्तदान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। देश की बड़ी आबादी युवा हैं और अगर हर स्वस्थ युवा साल में एक या दो बार रक्तदान करने का संकल्प ले ले तो रक्त की कमी की समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो सकती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर हम रक्तदान के महत्व के बारे में भी लोगों को जागरूक करें तो ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। एक पोस्ट, एक वीडियो या एक संदेश भी किसी को ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, रक्तदान का महत्व हमें तब और अधिक समझ में आता है जब हमारे किसी अपने को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। उस समय हमें एहसास होता है कि किसी अनजान व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान कितनी बड़ी मदद साबित हो सकती है। इसलिए हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर रक्त खोजने की बजाय पहले से रक्तदान की आदत विकसित करनी चाहिए। रक्तदान करने के लिए व्यक्ति की आयु सामान्यतः 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। रक्तदाता, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताएं या हाल ही में टैटू बनवाने वाले या पियर्सिंग करवाने वाले, एनीमिया से ग्रस्त, नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले, तुरंत सर्जरी या इलाज से निकले हुए, कोई वैक्सीन लगी हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित रक्तदाता रक्तदान नहीं कर सकते। दोस्तों, रक्तदान के महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है। इस दिवस की शुरुआत पहली बार 2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई थी। प्रतिवर्ष इस दिवस की थीम होती है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है, मानवता की एक बूंद रक्तदान करे, जीवन बचाएं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि रक्तदान सिर्फ किसी एक के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए ज़रूरी है। आज हम किसी और की मदद करेंगे, कल ज़रूरत पड़ने पर कोई हमारी मदद करेगा। यही एक स्वस्थ और संवेदनशील समाज की पहचान है। दोस्तों, अगर आप रक्तदान करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल, मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक या रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा में जा सकते हैं। इसके अलावा आप ई रक्तकोष की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करके अपने शहर या राज्य में मौजूद ब्लड बैंक और उनकी उपलब्धता की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको जब भी अवसर मिले रक्तदान ज़रूर करें। आपका कुछ मिनट का समय और थोड़ा सा रक्त किसी को जीवन दे सकता है, इसलिए आगे आइए, रक्तदान कीजिए, स्वयं स्वस्थ रहिए और किसी ज़रूरतमंद को जीवन का अनमोल उपहार दीजिए। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आज के क्रम की ओर। आज है क्रम तरुणों की पसंद, जिसमें हम आप श्रोताओं के पसंद गीत सुनेंगे। तो चलिए पहला गीत सुनते हैं, फिल्म सड़क का। ये गीत अनुराधा और अभिजीत की आवाज़ों में, गीतकार हैं सुरेंद्र साठी और संगीतकार हैं नदीम श्रवण। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी जिला रायगढ़ विकासखंड तमनार पोस्ट जीवरी के माझी पारा से नरसिंह माझी, सुदामा अगरिया, बलराम राठिया, लोकनाथ पटेल, हुलसराम राठिया, नंदराम माझी, विनोद विनीता अगरिया और बालीराम माझी।

बलराम राठिया, लोकनाथ पटेल, हुलसराम राठिया, नंदराम माझी, विनोद विनीता अगरिया और बालीराम माझी। विनीता अगरिया और बालीराम माझी।

दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अगले क्रम की ओर, जिस क्रम में होता है ज्ञान का भंडार और सभी हमारे श्रोता साथियों को रहता है हमारे इस क्रम का इंतजार, जिसमें हम आप सभी श्रोता साथियों तक देश, दुनिया और खेल जगत से जुड़े खबर पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रम घटना चक्र की, तो आइए शुरू करते हैं क्रम घटना चक्र।

फिनलैंड में दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन तैयार होने जा रहा है, जहां परमाणु कचरे को करीब 1 लाख साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को उन कालो नाम दिया गया है जो दक्षिण पश्चिम फिनलैंड के यूरा जोकी क्षेत्र में 433 मीटर गहराई में बनाया गया है। इसमें यूरेनियम कचरा रखने की क्षमता करीब 6500 टन होगी। भारत और ब्रिटेन ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी GSCO शुरुआत की। इसका उद्देश्य भविष्य की तकनीकों के लिए ज़रूरी खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये केंद्र स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी को दूर करने में मदद करेगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए 17 परियोजनाओं को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के लिए चुना। विजेताओं में कृषि मंत्रालय का एग्री स्टैक महाकुंभ 2025 पोर्टल और केरलम का ब्लड डोनेशन पोर्टल शामिल है। उत्तर प्रदेश स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का सवां रामसर स्थल घोषित किया गया। द अर्थ प्राइज 2026 पर्यावरण के क्षेत्र में युवाओं के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित द अर्थ प्राइज 2026 में भारतीय तीन किशोरों विवान छावछारिया, इरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता को ग्लोबल विनर घोषित किया गया है। उन्होंने इमली के बीजों के पाउडर का उपयोग करके पानी से माइक्रोप्लास्टिक निकालने का एक कम लागत वाला और बायोडिग्रेडेबल तरीका खोजा है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड की ग्राम पंचायत सरडी पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से के अंतर्गत थीम 5 स्वच्छ एवं हरियाली ग्राम श्रेणी में संयुक्त रूप से देश भर में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। आइए बढ़ते हैं खेल जगत से जुड़े खबरों की ओर। जर्मनी के 29 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के फ्लाविओ कोबोली को हराकर फ्रेंच ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। ये ज्वेरेव के करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। श्रीलंका के 23 वर्षीय रुमेश थरंगा ने 92-62 मीटर थ्रो फेंक कर दो बार के विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स को हराकर रोम डायमंड लीग जीत ली है। उनके थ्रो ने नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ 90.23 मीटर थ्रो को पीछे छोड़ दिया और अरशद नदीम के 92.97 मीटर थ्रो के बाद ये दूसरा सबसे लंबा एशियाई थ्रो बन गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में आयोजित हुए नॉर्वे चेस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। वे ये टूर्नामेंट जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में प्रज्ञानंद ने जर्मनी के विसेंट केमार को हराया। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर वेस्ले सो दूसरे स्थान पर जबकि अली रेजा फिरोजा तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 7 साल बाद साउथ एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। भारत ने फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। टीम ने सभी 4 मुकाबले जीते और 18 गोल किए। राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी धावक अनिमेश कुजूर ने रविवार को न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक अपने नाम किया। दोस्तों, क्रम घटना चक्र में बस इतना ही। यहीं समाप्त होता है क्रम घटना चक्र।

0: दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद में हमारी अगली प्रस्तुति सुनते हैं फिल्म अमृत का ये गीत किशोर की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी दुर्गा चौक मिट्टू मोड़ा रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, बिहारी पटेल, संतोष श्रीवास, दिलीप, रमेश पटेल, पुष्पा पटेल, पप्पू पटेल, कल्पना पटेल और नैना पटेल।
1: मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, 7 दिनों में हंसना चाहिए कम से कम 700 बार।
2: अच्छा दादा।
1: हाँ तो बच्चों,

0: नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियाँ के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।

आदमी हलवाई की दुकान पर गया, उसने रुपया फेंका और कहा, ओए मुंडिया एक ताजी और मीठी लस्सी बना। दुकानदार ने कहा, अभी लो बादशाह। लस्सी पीते ही उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने दुकानदार से कहा, तुम बासी और खट्टी लस्सी पिलाकर ग्राहकों को

दोस्तों, क्रम तरुणों की पसंद में आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म अपनापन का, जिसे गाया है लता और रफी ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के फरमाइश करता है हमारे श्रोता साथी शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव।

दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने गीतों की फरमाइश हम तक भेजते हैं, और इसी तरह हमारे सभी श्रोता साथी हमें पत्र भेजते रहें और अपने पसंदीदा गीतों का आनंद उठाते रहें। हमसे पत्र व्यवहार करने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है क्रम तरुणों की पसंद, युवाड़ी प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र, रायगढ़ छत्तीसगढ़। पिन कोड है 496001। दोस्तों, इसी के साथ ही आप हमें हमारे पते पर ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shrotarayagad@gmail.com। सब्जेक्ट में क्रम तरुणों की पसंद ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमें पत्र और मेल्स ज़रूर भेजें। हमें आपके पत्र और मेल्स का इंतज़ार रहेगा। अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्ति का। अपनी रेडियो दोस्त रिशा यादव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है FM 100.7 MHz पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 6:05 हुए हैं। एक नज़र कल के कार्यक्रमों के विषय में, श्रोताओं कल सुबह सुनिएगा 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा। कार्यक्रम चिंतन का प्रसारण हम करेंगे सुबह 6:05 पर, और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुनिएगा सुबह 6:10 पर, कृषि चर्चा 6:23 पर, रामचरितमानस भाग 39 का प्रसारण होगा 6:40 पर, और देश गान सुनेंगे 6:50 पर। संस्कृत और हिंदी में क्रमशः समाचार अनुप्रसारित होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:45-35 पर और सुबह 7 बजे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से ये सुनेंगे आप सुबह 7:05 पर, झरोखा खेलेंगे बच्चे तो खिलेंगे बच्चे, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर सुनिएगा 7:45 पर, और कार्यक्रम विवरण 7:55 पर, समाचार प्रभात सुबह 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी का प्रसारण होगा सुबह 8:30 पर, विविध भारती कार्यक्रम 9 बजे, और प्रादेशिक समाचार 9:55 पर आकाशवाणी के दिल रायपुर केंद्र से रिले होगा। लोक संगीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10:10 पर, और आपकी फरमाइश 10:30 पर कार्यक्रम विविध भारती कार्यक्रम ये सुनेंगे आप सुबह 11 बजे 11:55 पर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी की रायपुर केंद्र से सुनिएगा 12 बजे विविध भारती कार्यक्रम, और प्रायोजित कार्यक्रम दीदी के गोट ये सुनेंगे आप दोपहर 2 बजे विविध भारती कार्यक्रम 2:15 से शाम 5 बजे तक आप सुनकर आनंद लेंगे। और हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण रोज की तरह संध्या 5 बजे, शामे गजल ये 5:10 पर, कार्यक्रम घर द्वार 5:30 पर, हिंदी में समाचार संध्या 6 बजे 6:10 पर, छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार कार्यक्रम फिल्म संगीत 6:20 पर, प्रादेशिक समाचार 6:45 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत संध्या 7 बजे, किसानवाड़ी का कार्यक्रम सुनिएगा 7:20 पर, कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत 8:20 पर, 8:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत समाचार संध्या 8:45 पर, विविध भारती कार्यक्रम रात्रि 9 बजे, और 9:25 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर साइंस एंड टेक थीम पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले होगा।

कार्यक्रम विविध संगीत रात्रि 10 बजे आपकी फरमाइश रात्रि 10:30 में पर हिंदी में समाचार 11 बजे और 11:05 पर सुनेगा अंग्रेजी में समाचार। ये थे हमारे केंद्र से कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से प्रसारित छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे है जारी। और राज्यपाल रमन डे कह राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहिन। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी है 26 मई 2014 के प्रधानमंत्री पद के शपथ ले रही। उमन पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड ला तोड़ी है, जौन पहली घाव 13 मई 1952 के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रही और 27 मई 1964 तक पद्मा बने रही। पंडित नेहरू के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन के रहीस। 26 मई 2014 ले आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री श्री मोदी के सरलक कार्यकाल अब 4,399 दिन के हो गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य केंद्रीय मंत्री मन नरेंद्र मोदी ल देश के सबले ज्यादा बेरा तक सरलग निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मा बधाई दिन है। यही बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल है आज एक प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ल सरलग 2 कार्यकाल तक सबले ज्यादा बेरा तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहे मा बधाई दिन। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल के बैठक के दौरान सदस्य मन प्रधानमंत्री श्री मोदी पर सम्मान जतैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काली नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वां शासी परिषद के बैठक के अगुवाई करी। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के मुताबिक एसओ के विषय हरे 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। परिषद के बैठक में ये सोच ला साकार करे खातिर गोट बात करे जाही। परिषद के बैठक में मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचा में गोट बात करही, जो 4 मुख्य स्तंभ में आधारित हवे। बैठक में पाछू बछर 26 से 28 दिसंबर के दौरान राखे गए मुख्य सचिव के 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन के सिफारिश में घलो गोट बात होही। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले लागू होही। एमा छत्तीसगढ़ ला करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन जारी करेगे है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री मन संग हुए वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दीन। ये रकम ले ग्राम पंचायत ला सोझे फायदा मिली और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास काम ला गति मिली। बैठक में श्रमिक मन ला बेरा में मजदूरी भुगतान EKYC और डिजिटल व्यवस्था ला मजबूत करे में जोर देगी। बिलासपुर में काली राखे गए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर किहीन के विकसित भारत के आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जन भागीदारी है। ओमन किहीन की बछड़ 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में हर एक नागरिक के महत्ता की भूमिका हवे। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू व केंद्र सरकार के आने आने जन कल्याणकारी योजना और उपलब्धि लबतात राष्ट्र निर्माण पर सामूहिक प्रयास के आह्वान करें। उमन किहीन की प्रधानमंत्री के अगुवाई में देश आने आने क्षेत्र में तेजी ले बढ़वार करत है। राज्यपाल रमन डेका है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाय खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहीन है। राज्यपाल ले आज लोकभवन में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल डॉक्टर सिंह ले विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल क्षेत्र में शिक्षा के स्थिति और जरूरी शैक्षणिक सुविधा के संबंध में गोट बात हुई है। राज्यपाल ले प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे, रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, रायपुर नगर निगम के आयुक्त संबित मिश्रा समेत आने आने अधिकारी मन घलो भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल शहर और नवा रायपुर में लगाए गए पौधा के रख रखाव में विशेष ध्यान देबर किहीन है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रदेश में 28 जून के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चला जाही। एमा जन्म ले 5 बछड़ तक 3,45,000 ले ज्यादा लेका मल्ला पोलियो के खुराक पियाए के लक्ष्य रखे गए है। रायपुर जिला में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाही। अभियान के दिन जौन लेका मन पोलियो के खुराक नहीं पी पाही ओ मल्ला अवैया 2 दिन तक घर घर जाके खुराक दे जाही। छत्तीसगढ़ में रद्दा दुर्घटना में कमी लाए बर तकनीक आधारित निगरानी, बने चालक प्रशिक्षण और यातायात नियम के पालन में जोर दे जावत है। नवा रायपुर में रखे गए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा के संगे संग मंत्री केदार कश्यप तैयारी के समीक्षा करीन। बैठक में बताया गया है कि जनवरी ले मई 2026 तक 31,000 ले ज्यादा गाड़ी के फिटनेस जांच करेंगे है। उन्हें ANPR कैमरा और आने तकनीकी माध्यम ले 61,000 ले ज्यादा चालान जारी करेंगे है। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है काली रायपुर क्षेत्र के आने आने आवासीय कॉलोनी और हाउसिंग सोसाइटी के अगुवाई करैया मन संग बैठक करके उखर समस्या और सुझाव पर गोट बात करीन। बैठक में रद्दा, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधा ले जुड़े मुद्दा उठाएगी से। श्री चौधरी है संबंधित अधिकारी मल्ल समस्या के समाधान करे बर कार्रवाई करे के निर्देश दीन। रायपुर के राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR अनुसूचित जाति उपयोजना में धान बीज वितरण कार्यक्रम राखीन। ये दौरान पचेड़ा, बेलटुकरी और बिठिया गांव के 170 ले ज्यादा किसान मल्ला उन्नत धान बीज बांटेगी। संस्थान के निदेशक डॉ. PK राय है किसान मल्ला संतुलित खातु बौरे और वैज्ञानिक फसल प्रबंधन के जानकारी घलो दीन। कार्यक्रम के उद्देश्य उत्पादन ला बढ़ाना और किसान मन के आमदनी में बढ़वार करना है। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार में 26 मई के हुए एक ज्वेलरी व्यवसायी के हत्या और लूट के वारदात के खुलासा करत पुलिस 7 आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आरोपी मन के तीर ले करीबन 40 ग्राम सोना और 4 किलो ले ज्यादा चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में बौरे गाड़ी जब्त करे गए है। जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा बतेन कि मुख्य आरोपी खुशीराम साहू बिहार और झारखंड के अपन संगी मन संग मिल के व्यापारी प्रदीप सोनी ले सोना चांदी ले भरे बैग लूटे के प्रयास करीन। व्यापारी है जब एकर विरोध करी तभी एक आरोपी है ओखर ऊपर गोली चला दीस जिमा ओखर मौत हो गए। एकर बाद आरोपी लूटे आभूषण लेके फरार हो गए। उमन बतेन कि बिलासपुर रेंज और गोरेला पेंड्रा मरवाही के पुलिस कार्रवाई करत 36

0: छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में दबिश देके सातों आरोपी ला गिरफ्तार करे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के सरिया पुलिस साले ओना धान खरीदी केंद्र में 99 लाख रुपया ले ज्यादा के घोटाला के मामला में 4 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। ये आरोपी मना बछर 2025-26 में 3,140 कुंटल ले ज्यादा धान बिसाए के फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखा के घोटाला करीन, उन्हें बारदाना में घलो हेरा फेरी करीन है। पुलिस है ये मामला में पहली समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर ला गिरफ्तार कर ली है। बालोद जिला के डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल के टीम हा गांजा तस्करी के आरोप मा 5 जिन ला गिरफ्तार करके उखड़ती ले 72 किलो गांजा बरामद करे हैं। जब्त करेगे गांजा के कीमत करीबन 26 लाख रुपया बताए जाते। मुखबिर ले मिले सूचना मा पुलिस हा भेड़ी तिराहा तीर नाकाबंदी करके गाड़ी के जाँच करी, यही बेरा 4 आने फटफटी ले ओडिशा ले मध्य प्रदेश ले जावत गांजा पकड़ेगी। पुलिस चारो आरोपी और फटफटी ला जब्त करे है। और अब थोरकुन समाचार सार मा। राज्य शासन है गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा ला अस्थायी रूप ले सहकारिता और रजिस्ट्रार और सहकारी समिति के आयुक्त नियुक्त करे हैं। और कबीरधाम जिला मा साइबर सेल और पुलिस के टीम है आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा चलैया 2 जिन आरोपी ला गिरफ्तार करे है। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घाव फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबले ज्यादा बेरा तक सेवा देवैया निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। केंद्र सरकार के नवा विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई ले हो ही लागू। प्रदेश का करीबन 3,354 करोड़ रुपया के अंतरिम आवंटन करेगे है जारी। और राज्यपाल रमन डेका है राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति मन के लेका मल्ला बने शिक्षा देवाए खातिर जरूरी प्रयास करे बर किहीन। एकरी संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या की 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुने मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज में। रविंद्र जैन की लिखी हुई गीत, उन्हीं के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है जंगबाज।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
1: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में, तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है, यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है, उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था, कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत लीजिए, सुने मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में संतोष आनंद की लिखी हुई गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: मोहम्मद अजीज और मनोहर पडवाल के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार।
1: सुगम संगीत अभी आप सुन रहे थे, कलाकार थे डॉक्टर नमन दत्त। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया। और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर बने रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार 2 कार्यकाल तक सबसे लंबी अवधि में निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। साथ ही यह 140 करोड़ भारतवासियों के अटूट विश्वास, सम्मान और श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को प्राप्त अभूतपूर्व जनसमर्थन का सशक्त प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री के टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। शासी परिषद की बैठक में इस दृष्टिकोण को साकार करने और इसे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस, मापने योग्य परिणामों में बदलने पर विचार विमर्श किया जाएगा। शासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल समावेशी मानव विकास के ढांचे पर चर्चा करेंगे। यह ढांचा 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित है: मूलभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ाने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पिछले वर्ष 26 से 28 दिसंबर के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार विमर्श होगा। केंद्र सरकार की नई विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन योजना 1 जुलाई से लागू होगी। इस संबंध में कल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। श्री चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने अंतरिम आवंटन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के लिए 95,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की है। छत्तीसगढ़ को करीब 3,354 करोड़ रूपये का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। इस राशि से ग्राम पंचायतों को सीधे लाभ मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन तथा विकास कार्यों को गति मिलेगी। बैठक में श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान, ईकेवाईसी और डिजिटल व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बिलासपुर में कल आयोजित विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का आधार सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और जनभागीदारी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सम्मेलन में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास

0: शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा, छात्रावास सुविधा, विद्यालयीन अधोसंरचना और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े विषयों का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया जाना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 वर्ष तक के 3,45,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर जिले में 1,331 पोलियो बूथ बनाए जाएंगे। अभियान के दिन छूटे बच्चों को अगले 2 दिनों तक घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कल रायपुर क्षेत्र की विभिन्न आवासीय कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं और सुझावों पर चर्चा की। बैठक में सड़क, जल निकासी, सार्वजनिक सुविधाओं और अधोसंरचना विकास से जुड़े मुद्दे उठाए गए। श्री चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने सभी हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित कर समस्याओं के समयबद्ध समाधान पर भी जोर दिया। गौरेला पिंडा मरवाही जिले के कोटमी कला साप्ताहिक हाट बाजार में बीते 26 मई को हुई एक ज्वेलरी व्यवसायी की हत्या और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 40 ग्राम सोना, 4 किलो से अधिक चांदी, हथियार, जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किए गए हैं।
1: 26 मई के शाम को कोटमी साप्ताहिक बाजार में एक सोने चांदी के व्यापारी प्रदीप सोनी से लूटपाट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार आरोपियों की पतासाजी कर रही थी और इसी क्रम में अभी तक हमने जो इस घटना से जुड़े जितने आरोपी हैं, टोटल 7 आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इनसे अलग अलग उस पर सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। तो बरामद सामग्री में हमको 2 नग देसी कट्टा मिला हुआ है और 4 नग कारतूस मिले हुए हैं। इसके अलावा जो आभूषण हमने जब्त किए हैं उसमें 40 ग्राम सोना और चांदी लगभग 4.5 किलो के आसपास चांदी के जेवरात हम लोग से रिकवर कर पाए।
0: बालोद जिले की डोंडी लोहारा पुलिस और साइबर सेल की टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 72 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 26 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने भेड़ी तिराहा पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच की। इसी दौरान 4 अलग अलग मोटरसाइकिल के जरिए ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने 4 मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने साल्हे ऊना धान खरीदी केंद्र में 99 लाख रुपए से अधिक के घोटाले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने वर्ष 2025-26 में 3,140 क्विंटल से अधिक धान खरीदी की फर्जी ऑनलाइन एंट्री दिखाकर यह घोटाला किया। वहीं बारदाने में भी हेराफेरी की। पुलिस इस मामले में पहले ही समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर चुकी है। और पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।
2: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और वर्षा का मुख्य क्षेत्र जो है वो बस्तर संभाग होने की चांसेस है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून का आगमन जो है छत्तीसगढ़ में आगामी 3 दिन में होने की चांसेस है और ये मेघ गर्जन का गतिविधि जो है आगामी 5 दिन तक भी जारी रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान में 2 दिन तक कोई विशेष परिवर्तन होने की तो चांस नहीं है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य शासन ने गृह विभाग के सचिव रमेश कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से सहकारिता और रजिस्ट्रार तथा सहकारी समितियों का आयुक्त नियुक्त किया है। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने रिसाली नगर निगम की पार्षद पार्वती महानंद को फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में नोटिस जारी कर 25 जून तक जवाब मांगा है। जांजगीर चांपा जिले के पुटपुरा गांव में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सक्ती जिले के सिंदूरस गांव में बीते 2 और 3 जून की दरमियानी रात हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में मालखरौदा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं हत्या के बाद लूट का माल खरीदने के आरोप में एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम जिले में साइबर सेल और पुलिस की टीम ने आईपीएल क्रिकेट के मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टे का संचालन करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर में आज

पटाखा गोदाम में आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह उपलब्धि जनसेवा, सुशासन और राष्ट्रहित के प्रति श्री मोदी के समर्पित नेतृत्व का प्रमाण है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया और बालोद पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर 72 किलो गांजा बरामद किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं जंगल लव। इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज में, बोल हैं समीर के और संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।
7: कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तोहफा से। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की, बोल हैं इंदिवर के, संगीत बद्ध की है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का अगला गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत बद्ध की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है सरगम।

फिल्म सरगम के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। FM 14.7 MHz पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषक बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम चौपाल सुनैया जम्मू संगी संगवारी मन ला मुकेश चतुर्वेदी के राम राम जय जोहार। संगवारी हो संझा की बेरा और चौपाल की बैठकी माँ आप जम्मू सुनैया संगी संगवारी मन के स्वागत हावे। तो भैया हो दिन हो इस आज बुधवार और बुधवार के दिन हमार ये चौपाल की बैठकी माँ का हावे खास तेला हम बता दी आज। भैया हो आज के बाद जो हमारे कार्यक्रम के नियमित क्रम होते जिनमें आज हम चर्चा करबो जिमीकंद के उन्नत खेती किसानों के लिए लाभकारी। काबर की हमारे खेती किसानी में और खास करके बाग बगीचा कुलाबारी मन में जिमीकंदा के जो महत्व है ते हर आखिरी गजब चीज है। काबर की आप देखे हुए कि बड़ मिठाते घलो ये हर तो जिमीकंदा के भी उन्नत खेती किया जा सकत है जोन हर के हम किसान मन पर लाभकारी हो सकत है फायदेजनक हो सकत है। उकर अलावा संगवारी हो सबसे महत्वपूर्ण बात जो न रहे कि अभी की वर्तमान स्थिति में जैसे कि सरकार का तिल घलो एक बहुत बड़े अभियान चला था खेत बचाओ अभियान। भारत सरकार और कृषि विभाग के द्वारा शुरू करेगी एक महत्वपूर्ण देशव्यापी कार्यक्रम हो इस एक उद्देश्य होते माटी के स्वास्थ्य में सुधार करना संतुलित उर्वरक के उपयोग सुनिश्चित करना और प्राकृतिक जैविक खेती ला बढ़ावा देकर के कृषि भूमि ला उपजाऊ बनाए रखना है। यही क्रम में आज हम चर्चा करबो माइकोराइजा एक लाभदायक जैव उर्वरक जो हर की खेत बचाओ अभियान पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो। संगवारी हो आज के दशा में अंधाधुंध रासायनिक खाद के इस्तेमाल जो हो थे जेकर ले भूया नंदा जाते उपजाऊपन हर कम हो जाते उकरे सेती ही ये देशव्यापी अभियान खेत बचाओ अभियान शुरू किया जिसे जुन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते माइकोराइजा जुनहर की एक लाभदायक जैव उर्वरक होइस इला हमन चर्चा करबो आज के नसीहत में। इकर अलावा संगवारी हो अवैया दिन है बरसा दिन है और बरसा दिन में अपन कोला बारी बाग बगीचा मन में आनी बानी के फलदार पौधा के रोपण करता हमन तो फलदार पौधा के रोपण करे पर नया पौधा तैयार करे पर ग्राफ्टिंग अपनाए यानी कलम बांधना जो लगत है तो ग्राफ्टिंग अपनाए ये विषय में चर्चा करबू आज के टिप में। संगे संग आज के किसान के क्रम में हम आप ला भेंट कराबू ग्राम टारपाली विकास खंड रायगढ़ के कृषक फागुलाल कुराल ले मिश्रित खेती से सतत आमदनी विषय में मोर यानी मुकेश चतुर्वेदी के बातचीत। संगे संग संगवारी हो चर्चा करबो अपने कौशल का विकास अपने उन्नति का आधार कौशल विकास योजना के संबंध में। इकर अलावा संगवारी हो अवैया दिन हर बरसा दिन है और बरसा दिन आइस माने जाना था कि मच्छर जनित रोग ले बचाव पर साफ सफाई आवश्यक होते तो बरसा के पहली हमन आवश्यक साफ सफाई करना जरूरी होते जिनमें कि मच्छर पनपेझन और मच्छर जनित रोग ले बचाव हो सके। इकर अलावा भैया हो आज एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यानी कि सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इकर अलावा भैया हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत अपनाएं कार्बन उत्सर्जन घटाएं। संगवारी हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सोलर है जल विद्युत है ना तो ये सब के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि कार्बन उत्सर्जन ला हम कम कर सकन घटा सकन। खैर शुरुआत करी आज के विषय ले आज के बात ले और आज के बात में है संगवारी हो जिमीकंद की उन्नत खेती किसानों के लिए लाभकारी। काबर की हमार छत्तीसगढ़ में खासकर छत्तीसगढ़ हो ऐसे तो बाकी हर प्रदेश में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है ऐसे नहीं है कि हमार सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है जिमीकंदा के आनी बानी के सब्जी बनाते हैं और सब्जी बनाए के साथ साथ में हर ये है कि एक औषधि उपयोग भी बहुत ज़्यादा है जो जेकर खातिर औषधि उपयोग के खातिर बर एक बहुत ही ज़्यादा मांग रहे थे जो लकी ओल कथन तो ओल यानी जिमीकंदा एरेसी कुल के एक सर्वपरिचित पौधा है जो कि भारतवर्ष में सुरन बालकन अरसधाना और कई नाम ले भी जाना जाते और एक खेती भारत में प्राचीन काल ले हुआ थे और अपन गुण के कारण सब्जी में एक अपन अलग स्थान रखते और बिहार में तो एक खेती गृह वाटिका ले लेके बड़े पैमाने पर भी होते वैसे हमारे यहाँ भी छत्तीसगढ़ में घर घर में पहा तो गाँव देहात जहाँ तो जिमीकंदा लगाए चलते हैं और यहाँ के किसान एक खेती आज नकदी फसल के रूप में भी करते हैं। भैया हो ये जिमीकंद में पोषक तत्व के संगे संग अनेक औषधि गुण पाए जाते जेकर कारण ले एक आयुर्वेदिक औषधि में भी उपयोग किया जाते
तो ये दृष्टिकोण ले देखा जाए तो और खेती छायादार स्थान में भी भली भांति किया जा सका थे, जुनहर की किसान मन पर काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो इसे। तो एक बार अच्छा उपाय ये है, जिमी कंदा जोन कहा था नाम होते हैं सूरन याओल, एक उन्नत खेती करके किसान कम से कम लागत में शानदार मुनाफा कमा सका थे और यह 6-8 महीना की फसल हो इस जुनहर की लगभग 80-100 क्विंटल प्रति एकड़ उपज दे थे। इकर बर संगवारी हो जल निकास वाला बालुई दोमट माटी, जिकर पीएच मान 25 सेंटीग्रेड ले 35 तापमान सबसे उत्तम होते। और मुख्य उन्नत किस्म के बात अगर करण हमन तो गजेंद्र होते, में श्रीपद्मा होते। गजेंद्र जोन किस्म है यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किस्म है, जोनहर की 200-215 दिन के भीतर तैयार हो जाते और पैदावार लगभग 17-21 टन प्रति एकड़ होते। श्री पद्मा के जोन किस्म है तेहर भी अच्छा पैदावार देते, लगभग 17 टन एहू मेले प्रति एकड़ उत्पादन आते। बुआई के समय और तरीका में यह संगवारी हो कि बुआई के सही समय फरवरी ले लेके अप्रैल के मध्य में होते और कंद के चुनाव कर बरी है कि बुआई पर 250 ग्राम ले 500 ग्राम के स्वस्थ बीज के भी उपयोग करना चाहिए। और उन्नत किस्म में अधिक उत्पादन पर ईमन के चुनाव करना चाहिए। और खेत की तैयारी के बाद अगर हमन करें तो वो आलू के फसल हमन जैसे लगाथन बस उसने खेत की तैयारी करे बर है, यानी 2-3 बार बढ़िया गहर जुताई करके माटी ले बिल्कुल भुरभुरा बना लेना है। अब बुआई ले पहले प्रति एकड़ 10-15 टन के सड़े हुए गोबर के खातू अवश्य डालना चाहिए। और बीज के चयन में संगवारी हो इसे है कि 250-500 ग्राम वजनी कंद या टुकड़ा के भी इस्तेमाल एकर रोपण पर कर सका था नामन। और बीज के मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 12-14 क्विंटल बीज की आवश्यकता होते। दूरी के बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट के होना चाहिए यानी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 2 फीट यानी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। रोपण के समय लगभग 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटास प्रति एकड़ के बेसल डोज डालना चाहिए। और जब पौधा लगभग 1 फीट के हो जाए तो जड़ के पास में यूरिया और पोटास डाल के माटी चढ़ाना चाहिए। सिंचाई और मल्चिंग के बात करें तो अंकुरण के समय खेत में नमी होना बहुत जरूरी होते और एक बार सबसे बढ़िया उन्नत तकनीक जो है ड्रिप सिंचाई विधि है, एक बार सबसे बढ़िया होते काबर की हमें जड़ेज कर पानी है टप टप गिरत रहते जोनहर के बहुत ज़्यादा बेहतर होते और अच्छा लाभकारी भी होते। तो ड्रिप सिंचाई है रिकर्वर सबसे सर्वोत्तम होते और नमी बनाए रखे बर खरपतवार रोके बर पुआल यानी

0: पराली या गन्ना के सूखा पान पताई ले भी मल्चिंग किया जा सकत है। खुदाई की बात करें संगवारी हो तो खुदाई और उपज में ये है कि फसल की पत्ती जब पीला पड़ के सूखना चालू हो जाए अक्टूबर नवंबर में तब अगर खुदाई करना चाहिए और प्रति एकड़ 80 ले 100 क्विंटल तक आसानी से उत्पादन मिल जाते है। और जिमी कांधार ये मान के चल रहा कि एक ऐसे फसल हो जो नहर की बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और अपन घर के बाग बगीचा में कुलाबारी में अंगना में भी कई जन हमारे गांव देहात मन में लगाए रहते हैं और इधर ज़्यादा कुछ समस्या नहीं हो और आसानी से उत्पादन देते, कुछ देखभाल करे की विशेष जरूरत नहीं पड़े। कुल मिला के देखा जाए तो इधर एक प्रकार से हमन पर बहुत ही ज़्यादा लाभकारी फसल हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ आज के स्थिति में खेती किसानी के साथ साथ में कई ठन अनेक ऐसे फसल हैं जिनमें के लेके आमदनी कमाया जा सका थे। तो ये जिमी कांदा के सर्वोत्तम विकास और अच्छा उपज प्राप्त करे खातिर पर एक बार फिर आप लोग बता दूँ कि उत्तम जल निकास वाला हल्का और भुरभुरा माटी सर्वोत्तम होते और ये फसल पर बालुई दोमट माटी जिनमें जीवांश पदार्थ की प्रचुर मात्रा हो बढ़िया रथे। खेत के पहली जुताई माटी पलटने वाला हल्ले और 2-3 बार देसी हल्ले अच्छी तरीके से करे के बाद में बना लेना चाहिए। और अभी जो दिन आया थे वर्षा दिन तो इनमें समझ लें कि जुलाई के बाद खेत में पाटा चला करके समतल कर देना चाहिए और बाद में उन्हें रोपण करे के आवश्यक तैयारी जैसे कि बताया मैं कि 2.5 फीट के हिसाब से वो करना चाहिए। संगवारी हो बुआई से पहले ये आवश्यक हो जाते कि उपयुक्त कंद ला बोए ले पहले कंदोपचार करना चाहिए। करबर इमीसॉन 5 ग्राम और प्रति लीटर पानी में घोल के कंद ला 25 से 30 मिनट तक के ताज़ा गोबर के गाढ़ा घोल बना करके उसमें 2 ग्राम कार्बनडाइजिम पाउडर प्रति लीटर घोल में मिला के कंद ला उपचारित करके छाया में सुखाए के बाद में ही लगाना चाहिए। कहा होता कि उपचारित करके लगा तो हमें कोनो प्रकार के रोग मान नहीं लगे, फंगस नहीं लगे या गलन की समस्या नहीं हो, कंद गलन वगैरह की समस्या नहीं हो। तो कुछ ऐसे उपाय हैं संगवारी हो जो उन लगा करके हम जिमी कांदा के बेहतर उन्नत खेती कर सका था और वो जो है कि हम किसान संगी संगवारी मन पर काफ़ी ज़्यादा लाभकारी भी होते और फायदेजनक होते। भैया हो बेरा वक़्त होते आज के कृषक प्रश्न मंच के, तो कृषक प्रश्न मंच आज के ही कि माइकोराइजा हर का हो, प्रश्न ले एक बार फिर दोहरा दो संगवारी हो कि माइकोराइजा हर का होइस। सही उत्तर आप लिख के भेजना है ताकि हम अपन कार्यक्रम के माध्यम से आपके सही जवाब वाला सही उत्तर वाला ईमेल या पत्र हो ही तिल हम निश्चित तौर पे हमारे कार्यक्रम में शामिल करबो। भैया वो क्रम लागे बढ़ाते हुए आज के क्रम में हमार बीच में हैं आज के किसान और आज के किसान हैं ग्राम टारपाली विकासखंड रायगढ़ के कृषक हैं फागूलाल कुराल जो मिश्रित खेती करी नहीं यानी कि दलहन फसल भी लगाई नहीं प्याज भी लगाई नहीं और आनी बानी की फसल लगाई नहीं। तो आवाज सुने जाए ऊपर से कि काका फसल लगाई नहीं और मिश्रित खेती ले सतत आमदनी विषय में मौर्या ने मुकेश चतुर्वेदी की ये बातचीत।
1: किसान भैया हो हमारा आकाशवाणी के सार्थक प्रयासों थे उन्नतशील किसान और ग्रामीण विकास यही क्रम में आप मल्ला हमन सुगर सुगर उन्नतशील और प्रगतिशील किसान संगी संगवारी मन संग भेंट करात रथन जो आनी बानी के फसल उत्पादन करते हैं और खाद्यान्न की आपूर्ति करते हैं हमन के। तो आज के क्रम में हमन के बीच में बहुत अच्छा किसान संगी संगवारी बैठीन है जो मूंग वगैरह के खेती करीन है और आनी बानी के साग सब्जी के भी खेती करीन है तो उनका से गुड बात करन। तो सबसे पहले भैया आप लोग मुकेश चतुर्वेदी के राम राम जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार।
1: तुहर नाम बता तुहर गाँव के नाम बता।
2: फागूलाल कुराल टारपाली।
1: फागूलाल कुराल
2: टारपाली
1: और गाँव टारपाली। और विकासखंड कहाँ थे फागूलाल भाई?
2: विकासखंड
1: रायगढ़। तो ये तुम्हार ये कृषि भूया हर कतक बड़का एरिया है?
2: 4 एकड़ के है।
1: 4 एकड़ के
2: है। 4 एकड़।
1: 4.5 एकड़ है। तो अभी ये में का फसल लगे?
2: गोहरा जन का लगा हन दाल खिया।
1: अच्छा।
2: और प्याज लगा हन।
1: हाँ।
2: मूंगफली।
1: हाँ।
2: मूंग और उरीद।
1: अच्छा। तो ये मन हर कतक कतक रकबा में हो, कतक कतक डिसमिल में लगायल हो?
2: 5 डिसमिल में गोहरा जन का रहे।
1: हाँ।
2: ले ज्यादा मैं मूंग लगा ली।
1: अच्छा मूंग लगा है। बहुत बढ़िया करे है। तो ऐसा मूंग घर किसे है?
2: बढ़िया है पौले कम है।
1: अच्छा
2: तो ठीक है कहता।
1: हाँ हाँ। तो अभी वो काबूता चला थे में
2: निंदाई चला थे
1: निंदाई चला थे कहा ताहले एला कैसे करता माने ज्यादा उत्पादन होते तो बिक्रय भी करता बाहर बेचता भी की खुद उपयोग
2: करता?
1: अच्छा खाज पर रखता
2: उसे थोड़े बहुत बेच देते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ।
2: साल भर खर्चा रख के।
1: हाँ नहीं ठीक बात है। और संगे संग में प्याज आज भी लगाए
2: हैं। हाँ प्याज लगाए हैं।

0: प्याज कतक में लगाए हो?
1: 8-9 डिसमिल में लगे।
0: 8-9 डिसमिल में प्याज लगे है, मूंगफली भी लगे
1: हाँ, उसके में लगे मूंगफली।
0: मूंगफली भी उसने 8-10 डिसमिल में लगे है कहा तो मूंगफली में अभी टाइम लागी?
1: हाँ टाइम लागे, जेट में होही।
0: जेट में होही, अच्छा। बाकी फसल तो बढ़िया दिखा
1: है। बढ़िया है।
0: तो फागुलाल भाई में सिंचाई के का साधन रखे है?
1: सिंचाई के कुछ नहीं रखे हैं, ऐसे पानी पलो के।
0: तो बोर आहे का जो?
1: हाँ बोर आहे, बोर के पानी पला था।
0: अच्छा बोर के पानी पला था
1: हाँ।
0: तो अभी आए में जो मूंग वगैरह ला निंदाई कर दी है ताहले फिर रीता हो जाए भूया?
1: हाँ, रीता
0: हो जाए। कछु लगा है
1: में? अब वर्षा महीना धान
0: हाँ, ताहले जोताई उताई करके छोड़ देना है कहा, ताहले फिर वर्षा दिन में धानेज कमाना है रोपा। अच्छा
1: धान फसल सिरा ले फिर
0: सब्जी भाजी कछु कहीं कहा तो बहुत बढ़िया। नहीं मैं देखे तो वहाँ प्लाट बहुत सुघर लागत भी है और बहुत बढ़िया दिखत भी है और साफ सुथरा खेती करे है। तो मूंग जैसे कमाए है अभी तो मूंग हर अभी निंदाई चलत है?
1: हाँ, निंदाई चलत।
0: तो इला निंदे के बाद में ताहले किसे करता सुखो था?
1: हाँ, वो तो सुखा जाए अजी करपा मन 2-3 दिन के बाद
0: जो डोलिच में रखी है तो सुखा जाए।
1: हाँ डोलिच में रही।
0: अच्छा एक में रखे रखे
1: कोठार ले जाबो।
0: हाँ
1: अला पीटबो।
0: अच्छा
1: डंडा में
0: तहां दाना अलग हो जाही?
1: हाँ, दाना अलग,
0: फोकला अलग हो जाही कहा
1: ओला झुकबो कह।
0: हाँ हाँ हाँ। और दरे के का व्यवस्था है? वो घरे में घरदार था कि कोनो में रहे व्यवस्था
1: दरे के?
0: हाँ
1: डालला
0: डालला
1: वो घर में है व्यवस्था।
0: अच्छा घर में है?
1: हाँ, जात्री
0: जात्री में है। अच्छा बहुत बढ़िया फागुलाल भाई, बढ़िया बताया। हमारे पुराने समय ले वो जात्री के काम हर है और आज भी चला थे कहा तो जात्री ले। अच्छा जत्री ले हो जाते कहा तो दराई हो जाते जत की जरूरत पड़ी तहले करा और जोन बात जाते अतकिया होते तेला बेच भी देथन कहा तो बहुत सुघर बात है। तो अच्छा निर्णय लिया कि सरकार घलो को थे बनिस्बत धान के अपेक्षा दलहन तिलहन के फसल लगाए, आप मूंग के लगाया दलहन फसल लगाए है और अच्छा उत्पादन भी मिला थे कहा था तो यार बहुत अच्छा बात है। काबर की मैं कम समय की फसल रहते
1: पानी नहीं लगे
0: और पानी नहीं लगे
1: बिना पानी में होती
0: सबले अच्छा बात है। पानी नीच लगे
1: नीच लगे।
0: अच्छा तो ये किसे कर था मैंने शुरुआत ले बता
1: तुम ले पानी चपा देते खेत में?
0: हाँ
1: बतर होते नहीं
0: हाँ।
1: जोते ही करके बुन देते।
0: अच्छा मैंने इसे खुर्रा चीज था?
1: हाँ, खुर्रा।
0: अच्छा
1: मैंने ओल में जाम जाती
0: ओल में जामते
1: हाँ, ओल में जामते।
0: और कतक दिन के फसल होते है
1: यार? मांग फागुन 4 महीना की।
0: 4 महीना के फसल है, 4 महीना में तैयार हो गए कहा
1: हो
0: बढ़िया। तो ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगे कहा?
1: कुछ मेहनत नहीं, खाली निंदे बलागी।
0: हाँ हाँ
1: अब पिटाई करके घर ले जाए पड़े।
0: अच्छा बसरते के साफ सुथरा खेती होना चाहिए कहा तो जैसे तुम्हारे डोली बढ़िया साफ सुथरा रखे कुछ प्रकार के खरपतवार नहीं दिखते हो में और बढ़िया भूया भी बहुत अच्छा लगा थे। नहीं बहुत अच्छा बात बता फागुलाल भाई कि ये में पानी के कुछ आवश्यकता नहीं है। सरकार का लोकरे बरकत है कि दलहन तिलहन के फसल ला ज्यादा प्राथमिकता दें बनिस्बत धान की अपेक्षा। भले ही कुछ क्षेत्र मन में हमारे किसान संघ संगवारी मन धान के खेती ज्यादा मात्रा में कर लेते कहा तो ओहर कहीं ना कहीं पानी के समस्या हर आगे हो जाते है। भूजल स्तर मन नदी नरवा सुखा जाते बोर मन घलो सुखा जाते हैं, पानी पर हाहाकार मच जाते है। तो भरे गर्मी मन में पानी के दिक्कत हो जाते आदमी पर पेयजल के समस्या हो जाते तो वो दृष्टिकोण ले आप जो दलहन तिलहन फसल लगाए है मूंगफली लगाए है मूंग लगाया है ये मन सब
1: गोंदली में ज्यादा पानी लगते
0: है। हाँ हाँ लेकिन ये मन है ज्यादा अच्छा मैंने मूंग में पानी नहीं लगे कहा तो बहुत अच्छा जानकारी दे आप। और में आमा आमी भी लगाया है कस लगा थे बढ़िया आमा भी फल आए
1: आहे 15-20।
0: अच्छा 15-20 ठी पेड़ आए और लगभग सभी में तो फल दिखा थे कहा तो हाँ हाँ तो
1: कम ऐसे कहा
0: ऐसो कम है थोड़े से आम के फसल है ना। नहीं चला बहुत सुघर जानकारी दिया कि आमा के भी फसल है मेरे छोटे से तुम्हार बगीचा फार्म हाउस सर बहुत बढ़िया बनाया है पानी गांजी की व्यवस्था है खेती किसानी करे पर और आनी बानी के साग सालन मान घर बार भी हो जाते और घर ले तुम्हार बगीचा हर ज्यादा दूरिया नहीं है कसला नजदीक के ना
1: 10 कदम।
0: हाँ हाँ नहीं तो बहुत अच्छा जानकारी दिया फागुलाल भाई। उम्मीद करबू कि हमारा आकाशवाणी के माध्यम ले सुनोया किसान संगी संगवारी मन भी निश्चित तौर पे लाभ उठाएंगे। आप अतक सुघर जानकारी दे एकर सेती आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राम राम जय जोहार जय जोहार
1: जय जोहार।
2: तो संगवारी हो अभी हम सुनते हैं देखा आज के किसान फागुलाल कुराल जी करले जो कि कम भूया में बेहतरीन तकनीक अपना करके मिश्रित फसल कर रहे थे मूँगफली भी लगाए हैं और झुनगा भी लगाए हैं उरीद मूंग भी लगाए हैं। तो सरकार घलो चाहते हैं कि बनिस्बत धान के खेती के अलावा कि आनी जो दलहन तिलहन के फसल है वो प्राथमिकता से आदमी लगाएं और निश्चित तौर पे ये मान के चले हैं कि अन्य फसल मन के भी अगर खेती करत हैं लगात हैं तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले मुनाफा मिले। और भूया की स्थिति ल देखते हुए ये आवश्यक भी हो जाते कि वो में ही फसल परिवर्तन फसल चक्र करें और आनी बानी के फसल विविधीकरण माने फसल विविधीकरण ल अपनाएं जिनमें आनी बानी की फसल लगा लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। भैया हो आज के नसीहत के परिहावे और नसीहत में है माइक्रोराइजा एक लाभदायक जैव उर्वरक, लेकिन ओकर पहली खेत बचाओ अभियान। खेत बचाओ अभियान हर भारत सरकार और कृषि विभाग के द्वारा शुरू करेगी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो इस जिकर उद्देश्य होते माटी के स्वास्थ्य में सुधार करना, संतुलित उर्वरक के उपयोग सुनिश्चित करना और प्राकृतिक जैविक खेती ल बढ़ावा देके कृषि भूमि ल उपजाऊ बनाना। वर्तमान स्थिति हर संगवारी हो काफ़ी चिंता के विषय है। कृषि वैज्ञानिक मन भी बार बार हमार कार्यक्रम के माध्यम से भी सलाह देते रहते हैं, फिर आप मन के गांव देहात में उनके बीच में भी कभी कोई प्रशिक्षण रहते, कोई सेमिनार रहते, कोई ट्रेनिंग रहते, कोई मीटिंग रहते, वह में भी कृषि अधिकारी मन ये बात ल कहते रहते, हमन भी कार्यक्रम के माध्यम से कहते रहतन कि ज़्यादातर भूया की सुरक्षा करना है तो प्राकृतिक खेती हो, संतुलित खाद उर्वरक के प्रयोग हो और जैविक खेती हो। तो अभियान के मुख्य विशेषता के बात करन हमन तो मृदा परीक्षण जुनहर की बहुत आवश्यक होते, तो संगवारी हो सॉयल टेस्टिंग किसान मन ल अपन माटी के गुणवत्ता की जांच करे खातिर बार प्रोत्साहित करते हैं ताकि ओकर अनुसार सही पोषक तत्व के उपयोग किया जा सके। भैया हो देखा तो माटी के जांच करा ले ये फायदा हो जाते, जैसे मनसे अपन शरीर के जांच कराते तो पता चलते कि का बीमारी है, का तकलीफ है, कौन सा अंग में है, कैसे प्रकार के है ओकर। उसने माटी के परीक्षण करा ले उनमें पता चल जाते कि कौन सा पोषक तत्व के उनमें कमी है, बेसी है, ज़्यादा है, अम्ली है, क्षारीय है कि नहीं। तो एक स्थिति पर बहुत आवश्यक होते कि मृदा परीक्षण, मृदा परीक्षण के परिणाम के पश्चातों में आप जो कमी बेसी है वो पूरा कर सका था, घटा सका था, बढ़ा सका था। एक अलावा संगवारी हो दूसर बात आती संतुलित उर्वरक और कीटनाशक, तो खेत में रसायन की अत्यधिक इस्तेमाल रोकना और नकली कीटनाशक की पहचान करना सिखाए जाते। एक अलावा भैया हो प्राकृतिक कृषि यानी कि जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धति ले अपना की माटी के खोए हुए उर्वरता ला वापस लाना, ये हर हो इस खेत बचाओ अभियान की मुख्य विशेषता। और ये अभियान बर ये है कि बहुत ही ज़्यादा मैंने सुरक्षा की बात आए, तो ये जो खेत बचाओ अभियान जैसे चला थे वही क्रम में माइक्रोराइजा जुनहर की एक लाभदायक जैव उर्वरक हो इस संगवारी हो। माइक्रोराइजा हर एक कवक फंगस हो इस जोनर की पौधा की जड़ में जड़ और माटी के बीच में एक गहरा सहजीवी संबंध बनाते और ये पौधा की जड़ के संग में मिल के काम करते और फिर माटी में गहराई तक फैल करके पौधा ला दूर दराज के पोषक तत्व और पानी ला अवशोषित करे में मदद करते। आप जानिए कि ये माइक्रोराइजा हर कैसे काम करते, तो भैया हो माइक्रोराइजा और पौधा की जड़ एक दूसरे के ऊपर में निर्भर रहते हैं। पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन सुगर कार्बोहाइड्रेट बनाते जिकर ले ये फंगासर ग्रहण करते, फिर पोषक तत्व के आपूर्ति बदला में माइक्रोराइजा हर माटी ले पानी और महत्वपूर्ण पोषक तत्व विशेष रूप ले फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, जिंक है और आयरन है ओला खींच के पौधा की जड़ तक पहुँचाते। अब फायदा की बात करना निकल तो माइक्रोराइजा के प्रमुख फायदा में मजबूत जड़ होते, यह पौधा के जड़ तंत्र ल अधिक विकसित और मजबूत बनाते, बेहतर पोषण देते, यह माटी में मौजूद अनुपलब्ध और अघुलनशील पोषक तत्व ल घोल के पौधा की में उपलब्ध अवस्था में लानते, तनाव सहे की क्षमता इकर प्रभाव ले पौधा सूखा और बीमारी के बेहतर तरीका ले सामना कर पाते, उच्च पैदावार। भैया हो ये पौधा में क्लोरोफिल के मात्रा ला बढ़ाते जेकर ले पौधा में हरियाली बाढ़ते और उकर उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करते। भैया हो खेती में उपयोग तो इला कृषि में जैव उर्वरक के रूप में जाने जाते और यह टमाटर मिर्ची प्याज आलू अनाज जैसे लगभग जत की प्रकार के प्रमुख फसल हैं पौधा हैं उस सब बर यह अत्याधिक ही फायदेमंद है। तो ये जैव उर्वरक जो है तो यह बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ अंधाधुंध रसायन के उपयोग होते और ज़्यादातर रसायन के उपयोग ले कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव ये है कि देर सवेर हमार खेत के भुइयाँ हैं वो माटी मन कड़ापन हो जाते हैं, ज़्यादा रखड़ खातू डारिया तो कहीं ना कहीं नुकसान होते। फिर एक ठीक और समस्या है कि आज के समय में खेत हर एक बूंदी खाली नहीं रहे। पहले के समय में कहा रहे कि एक सीजन में फसल लगाएं और बाद में छोड़ दे रहे हैं खेत ले तो पूरा घाम महीना भर खाली च रहे। तो में घाम पड़े सौरीकरण होए में एकदम भुइयाँ ठठा जाए और ठठाए ओकर बाद ले जहाँ अगरासी पानी गिरे शुरू शुरू के पानी गिरे तहाँ ले मस्त गहर जोताई कर दें खेत डोली मनला और संगे संग में खातू पालें। तो ऐसे करके ये चलत रही से। लेकिन आज के समय परिस्थिति दूसरा हो गई। आज किसान ला ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए, मुनाफा चाहिए। तो वो बनिस्बत में हमला ये आवश्यक भी हो जाते कि खेती के उन्नत तौर तरीके हैं, उन्नत तकनीक हैं, ते मनला ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करी। जिनमें कि कृषि वैज्ञानिक मन के सलाह अनुसार जैव उर्वरक है, प्राकृतिक खेती है, जैविक खाद है, गोबर खाद है, केचुआ खाद है, वर्मी कंपोस्ट जुन कथन हमन कंपोस्ट खाद है, इमन के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करन हमन बनिस्बत के रासायनिक खाद के। ओकर अलावा जैविक अजूला चा के अजूला के भी उपयोग खेत में किया जा सकत है ना, हरित सहवाल है। तो ऐसे बहुत सारा जो जैविक चीज मन है तेमन के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जेकर ले उत्पादन हमन के बेहतर हो ही और भूया हर भी सुरक्षित रही। यही खेत बचाओ अभियान के मुख्य माने लक्ष्य भी है कि किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो देसी तकनीक मन है, प्राकृतिक खेती है, जैविक खेती है, मन की ओर ज़्यादा झुकाव रहे उनकर बनस्बत की रासायनिक खेती या रासायनिक कीटनाशक वगैरह मन के ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ले बचें, ये प्रयास सरकार की घलो हावे। तो भैया हो गोड़ बात देबो फिर विराम और सुनाबो आप लखन ये संदेश।
3: असली नोट से क्यों खेल रहा है
4: ब्रो? ये फटा है।
5: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
4: वाओ, नया नोट मिलेगा?
5: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो
6: कूल रहो।
2: संगी हुए पारी देखा था कि जून महीना चला थे और जून महीना आग घलोगे और मौसम के हाल चल देखिए तो घामर घलो जाना थे। तो यही बता रहे कि एक क्षण छमाझम लोकगीत है, आवाज सुना चाहे वो गीत का।

तो संगवारी हो अभी सुने हमन लोकगीत, उम्मीद करबो कि आप मन ला पसंद आई सो ही। अब जाहिर सी बात है कि पसंद आई तो चिट्ठी पत्री ईमेल के माध्यम से अपन विचार ले अवगत जरूर कराहू। संगवारी हो गुड बात के हमन के क्रम चला थे और कार्यक्रम हावी चौपाल और में आज के टिप के पारी आ गई ना। तो टिप में हमन ला ये चर्चा करना है कि नया पौधा तैयार करने के लिए ग्राफ्टिंग अपनाएं। तो भैया हो ओ यह दिन हर वर्षा दिन है और वर्षा दिन में अपन कोला बारी बाग बगीचा में आनी बानी की फलदार पौधा लगाए की कोशिश करता ना हमन, और लगाना भी चाहिए काबर की इकर से हमार बाग बगीचा में बढ़िया फल के उपलब्धता हो जाते हैं और आजकल तो व्यावसायिक रूप में भी बहुत ज़्यादा एकर मांग बढ़त जाते है। तो ग्राफ्टिंग यानी कलम बांधना बागवानी की एक ऐसी तकनीक हुई जिनमें दो अलग अलग पौधा के हिस्सा ला ये तरीके लिए जोड़े जाते हैं जिनमें कि एक संग मिल के एक नवा पौधा बन जाता है और यही अच्छा जड़ वाला पौधा ला रूट स्टॉक और अच्छा किस्म के टहनी ला सायन कहते हैं। और ये विधि हर पौधा के तेजी ले विकास और अच्छा पैदावार पर उपयोग किया जाता है। वैसे तो ग्राफ्टिंग के मुख्य दो भाग होते हैं, पहला होते हैं रूट स्टॉक, यह नीचे वाला मजबूत पौधा होते हैं जिकर जड़ जमीन में होते हैं, और दूसरा होते सायन, यह ऊपर वाला पौधा की स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाला टहनी होते जिनमें कलिका बर्ड होते। भैया ग्राफ्टिंग के प्रमुख तरीका में ही पौधा के ग्राफ्टिंग कई तरीके ले किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित और आसान विधि जो होते वह क्लिप्ट ग्राफ्टिंग या वी ग्राफ्टिंग। तो यह सबसे आम और सफल तरीका हो इस ये लिप्ट ग्राफ्टिंग या वी ग्राफ्टिंग जो कहा था ते में रूट स्टॉक यानी नीचे वाला पौधा ला जमीन से कुछ इंच ऊपर ले सीधा काट देते हैं और एक तना के बीचों बीच चाकू ले एक दो इंची के गहरा चीरा यानी वी आकार के कट लगाए जाते और ऊपर ऊपर में सायन यानी ऊपर वाला टहनी ला नीचे ले दोनों तरफ ले छिल के वी के पच्चर के आकार के बना लेते हैं।

छाल थोड़े से ढीला करते हैं और अच्छा पौधा यानि सायन से केवल एक स्वस्थ कलिका आँख यानि बडल छाल के साथ सावधानी काट करके निकाल लेते हैं। एक कलिका में रूट स्टॉक के टी आकार के कटे हुए हिस्सा में फंसा देते हैं। एक कलिका वाला हिस्सा ला खुला छोड़ते हुए पॉलीथीन ले अच्छी तरीका लपेट करके बांध देते हैं। एक अलावा संगवारी हो साइड ग्राफ्टिंग भी होती है। इमें रूट स्टॉक ल बिना काटे उकरे साइड में एक तिरछा कट लगाए जाते हैं और सायन यानी टहनी के निचले हिस्सा ला तिरछा काट करके रूट स्टॉक के कट में फिट किया जाते हैं और फिर फिट करे के बाद में इला मजबूती ले टेप या पॉलीथीन ले बांध दिया जाते। इकर अलावा भैया हो ग्राफ्टिंग के कुछ प्रमुख समय हैं, सावधानी है। तो इकर बार इसे है कि ग्राफ्टिंग हमेशा बसंत या बरसात के मौसम में करना चाहिए जब पौधा में नमी और रस की प्रवाह बढ़िया हो। यानी अभी जैसे बरसात दिन आते हैं तो बरसात दिन में आप मन एक बेहतर उपयोग कर सका था, काबर की बरसात दिन में पेड़ पौधा मन के बढ़वार के बहुत ही अच्छा समय रहते। तो बरसात के मौसम में करना चाहिए जब नमी और रस के प्रवाह अच्छा हो। इकर अलावा रूट स्टॉक और सायन दोनों के व्यास यानि मोटाई लगभग एक समान होना चाहिए ताकि उकर परत आपस में मिल सके। इकर अलावा भैया हो ग्राफ्टिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाला चाकू बढ़िया साफ हो, कीटाणु मुक्त रखना चाहिए और कटे हुए हिस्सा ला पॉलीथीन से कस के बांधना जरूरी होते, अन्यथा टहनी है सूख जाते। ग्राफ्टेड पौधा ला कुछ दिन तक सीधा धूप ले बचा के छायादार जगह में रखना चाहिए। ये हो सके तो ग्रीन शेड नेट है तो ज़्यादा बेहतर है कि नहीं। और अगर बड़े पौधा है तो कोई बात ही नहीं है कहा, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना चाहिए कि छोटे पौधा में अगर हम कलम बांधा था ग्राफ्टिंग करा था तो वो पौधा ला कुछ दिन सीधा धूप ले बचा करके छायादार जगह में रखना चाहिए या कोनो छोटे पेड़ के नीचे में भी रख सका था। और तो ये हरे जो ग्राफ्टिंग कहा जाते थे हर ग्राफ्टिंग यानि कलम बांध के हम नया पौधा तैयार कर सका था ना अपन खेत के बारी मन में, खुला बारी मन में, बाग बगीचा मन में। संगवारी हो अपन हाथ में तैयार करा था और ग्राफ्टिंग अपना था तो निश्चित तौर पे मान के चला कि नवा पौधा तैयार करे में आप मन भर ही सहूलियत हुई और एक बेहतर पौधा आप तैयार कर सका था। तो ग्राफ्टिंग तकनीक हर बागवानी के सबसे बेहतर और उन्नत तकनीक हुई और ये मान के चले रहो कि आप मन अगर ये तकनीक मन में अपना था तो आनी बानी के फूल पौधा मन में भी किया जा सका थे, गुलाब वगैरह के जो पौधा है ते मन में भी किया जा सका थे और नींबू वगैरह के पौधा में तो गर्वेज करते कहा। तो उकर अलावा ऐसे ही कि ग्राफ्टिंग हर आजकल ऐसे होगी कि आप देखियो कि ग्राफ्टिंग ग्राफ्टेड बैगन भी आते तो साग सब्जी के फसल मन में भी ये तकनीक मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाते। तो आज की वर्तमान स्थिति में जो हिसाब ले हमारे खेती किसानी उद्यानिकी बागवानी ये सब मन में उन्नत तकनीक मन के इस्तेमाल होते, नवा नवा तौर तरीका मन के इस्तेमाल होते, नवाचार होते, वो दृष्टिकोण ले देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है और निश्चित तौर पे करना भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए। काबर कि कहीं ना कहीं आज की वर्तमान स्थिति में देखते हुए हमारे खेती किसानी में भी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते और ये सब हमारे कृषि वैज्ञानिक मन की अथक मेहनत के परिणाम है और उकर साथ साथ में किसान भाई मन की जागरूकता। सबसे ज़्यादा कोनो भी चीज़ के प्रति जागरूक होना और समझना वाला और सरकार के तिल घलो बराबर सहयोग मिलत है ताकि किसान उन्नत तौर तरीका मन ला अपनाए, कृषि में नवाचार ला अपनाए, बागवानी में नवाचार ला अपनाए, जेकर से उकर कृषि उत्पादन और या कि फिर बागवानी के उत्पादन हर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके और किसान भाई आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें, सफल बन सकें। इकर पर ये उपाय किया जाते है। तो भैया हो फिर गोट बात ला देबो विराम और सुनाबो आप ला फिर एक ठन ये छमाचम लोकगीत।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तो संगी हो, अभी हमन गीत सुनें, गीत के बाद संदेश सुनें। अब चर्चा के विषय है हमन के कि अपने कौशल का विकास, आपकी उन्नति का आधार कौशल विकास योजना।

भैया हो देखा तो कौशल विकास कहले आज के समय में करियर के सफलता और व्यक्तिगत उन्नति के सबसे मजबूत आधार होते। और भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकार के द्वारा युवा मन ला, युवा संगी संगवारी मन ला आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाए खातिर बर कई ठन योजना कौशल प्रशिक्षण के चलत है। भैया हो कौशल विकास की दिशा में सबसे प्रमुख हो लोकप्रिय योजना होती है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY। और एक उद्देश्य होते है कि युवा मनला उद्योग प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वो बेहतर आजीविका प्राप्त कर सकें। और एक प्रशिक्षण जोन में कि विभिन्न क्षेत्र जैसे कि IT है, ब्यूटी है, रिटेल है, प्लम्बिंग है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, जिकर पर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भी दिया जाते, यानी कम समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाते ताकि वो युवा संगवारी जागरूक हो जाएं और प्रशिक्षण प्राप्त करके कहीं कोनो भी कंपनी मन में या प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी संस्थान मन में अपन जॉब पूरा कर सके, नौकरी कर सके। और एक बार प्रावधान ये होती कि प्रमाण पत्र और सहायता संगवारी हो कोर्स पूरा करी के बाद में सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट दिया जाते जिन्हों की नौकरी पाए में काफ़ी हद तक मदद करते। पात्रता की बात करें तो कोई भी भारतीय युवा संगवारी जो बेरोजगार हो या स्कूल कॉलेज छोड़ चुके हो एक लाभ उठा सकते हैं। और एक बार इसे है कि ये जो कौशल विकास है संगवारी हो देखा तो मनसे के हाथ में अगर कोनो प्रकार के हुनर है तो वह कभी भी भूखा नहीं मरे, चाहे कछु भी चीज रहे, चाहे मोटरसाइकिल बनाए, साइकिल बनाए, TV बनाए, मोबाइल बनाए, कछु भी जिनिस करे वह, या के फिर ITI वगैरह करके बड़े जो ट्रेड होते हैं तेमन में भी काम कर सके वह। तो ऐसे बहुत सारा उपाय हैं, तौर तरीका हैं जिनमें ये कौशल विकास के माध्यम से रोजी रोजगार की प्रबल संभावना रहती। और एकर बार अपन कौशल के सही तरीका और जानकारी पर यह आवश्यक हो जाता है कि जहाँ जहाँ ये योजना संचालित है तो राज्य में कौशल विकास केंद्र जहाँ हैं वहाँ ले प्रशिक्षण लेकर के अपन कौशल के विकास करके अपन उन्नति के आधार कर सकते हैं कौशल विकास योजना के माध्यम ले। संगवारी हो आप देखे हुए कि हमारे गांव देहात मन में बहुत सारा ऐसे कृषक संगी संगवारी मन है या ग्रामीण महिला मन है जिन मन की छोटे छोटे जगह ले प्रशिक्षण लेकर के खाद्य प्रसंस्करण है, मशरूम उत्पादन है, सिलाई कढ़ाई के बुता है, ऐसे बहुत सारा काम ला उमन करते हैं और रोजी रोजगार के अपन काम ला अंजाम देते हैं और एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हैं। तो ये जरूरी हो जाते हैं कि कौशल माने जो व्यक्ति में हुनर है और ख़ास करके युवा संगी संगवारी में हो, चाहे युवा हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों, वह कर महत्वपूर्ण नहीं हुए, बसरती है ऊपर में सीखे के ललक होना चाहिए और कौशल विकास प्रशिक्षण ले करके वो अपन करियर के अपन रोजी रोजगार के व्यवसाय खुद भी कर सकते है, यानी कि अपन उन्नति के आधार वो खुद तैयार कर सकते है। यह रोज कौशल विकास योजना और कौशल विकास योजना के अंतर्गत में आनी बानी के प्रशिक्षण केंद्र रहते, आनी बानी के ट्रेड रहते, व्यवसाय रहते जिनमें कि वह ट्रेनिंग लेके प्रशिक्षण प्राप्त करके अपन जिंदगी जिए बर रोजी रोजगार बर वो खड़े हो सकते है। तो भैया हो अपन कौशल के सही विकास करें ताकि अपन खुद के ऊपर उन्नति के आधार बने, यह होती कौशल विकास योजना। संगवारी हो कर अलावा दूसरा विषय में हमन के चर्चा के विषय रही से कि मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई आवश्यक। भैया हो देखा तो अवैया दिन है बरसा दिन आने वाला है और बरसा दिन आए के पहले हमन ला बहुत आवश्यक होते कि सावधानी अपन स्वास्थ्य के प्रति सजग होना बहुत जरूरी होते। तो मच्छर जनित रोग जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इकर लिए बचाव करे खातिर व साफ सफाई है सबसे प्रभावी और आवश्यक उपाय हो। काबर की मच्छर है रुके हुए गंदा पानी में पनपते, इकर से अपन आसपास के वातावरण ला स्वच्छता बनाए रखना बहुत आवश्यक होते। फिर मच्छर के प्रजनन चक्र जो लार्वा रहते वो पूरी तरीके लिए हम नष्ट कर सकते हैं ये साफ सफाई के द्वारा।
साफ सफाई और बचाव पर प्रमुख बात है जो मन ध्यान देना चाहिए कि पानी जमा ना होने दें। तो सिंगारी हो अभी भी देखी हुई है कि हमन गर्मी के दिन चला थे तो कूलर वगैरह के इस्तेमाल करथन, गमला में फूल पान में लगाए हैं तो मैं पानी देथन, पुराना बाल्टी है, पुराना टायर है, पुराना मटकी है या पुराना कोई सा भी बर्तन है ओहर बाहर में पड़े रहते और मैं हल्का सा भी पानी गिरीस तो पानी जाम हो जाते, मैं पानी मार जाते और जाहिर सी बात है कि पानी माढ़ीस तहले वो मच्छर के पनपे की शुरुआत हो जाते। तो पहला प्रयास ये करना चाहिए कि पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, कूलर गमला बाल्टी या कोई भी पुराना बर्तन है पुराना टायर है उनमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, पानी के निकासी करना जरूरी होते पानी तत्काल फेंक देना चाहिए, पलट के रख देना चाहिए पुराना मटकी या बर्तन है तो। ओकर अलावा संगवारी हो पानी ले ढाक के रखना चाहिए, पानी ले भरे बर्तन ला या टंकी है ओला हमेशा ढक्कन बंद करके रखना चाहिए। और ओकर अलावा नाली की साफ सफाई भैया हो घर के आसपास या हमारा गरवा बछरू रखें कोठा वगैरह है तो आसपास में ओकर पशुधन के मलमूत्र निकले के जो रास्ता है नाली है ओकर नियमित रूप से साफ सफाई बहुत जरूरी है, कवर की नाली ले साफ रहें और पानी के बहाव ला बाधित झर होते हैं या हमारा बरसात पानी के आना जाना रहते वो लोग कहीं ना कहीं आवागमन पर उखर रास्ता बना के रखना चाहिए। इकर अलावा भैया हो व्यक्तिगत सुरक्षा तो सोच समय में रात के सूते के समय हमेशा मच्छरदानी के उपयोग करना चाहिए और इकर अलावा खिड़की दरवाजा मन में जाली लगवाना चाहिए, त्वचा में DET युक्त मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम के लगाना चाहिए। तो ऐसे आवश्यक सावधानी हैं उपाय हैं जो उन्हें लकी करना चाहिए। संगवारी हो मनसे ला चाहिए कि अपन स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और हर परिस्थिति में चाहे मौसम तो ऐसे कि ऋतु परिवर्तन होते रहते कई प्रकार के मौसम आ जाते रहते बदलते रहते तो वो दृष्टिकोण ले बहुत आवश्यक हो जाते कि ऋतु परिवर्तन के दृष्टिकोण ले देखते हुए हमन ले ये आवश्यक है कि हम अपन शरीर के अपन स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखी, खास करके मौसम के जो प्रभाव होते और आने वाला समय में बारिश के दिन भी आई तो मच्छर वगैरह ले बचे के जो आवश्यक उपाय हैं मच्छर जनित रोग ले बचाव के आवश्यक उपाय ओमन ले जरूर पालन करना चाहिए, अपन शरीर ले बढ़िया ठिन्ना और मजबूत और स्वस्थ रखना आवश्यक होते, ओकर पर जरूरी होते कि नियमित रूप से साफ सफाई करना। तो ऐसे उपाय करके हम बेहतर साफ सफाई कर सका थन। तो भैया हो गोड़ बात ल फिर देवो विराम और सुनाबो आप लग ठन ये छमाछम लोकगीत।

तो संगवारी हो अभी हमन गीत सुनेन अब गीत के बाद में जाति मिलाती बेरा है और चर्चा के विषय भी हमारे बाँचे हुए संगवारी हो आज 10 जून है और 10 जून की अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाते काके सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 जून के ये दिन ला मनाया जाते जून में सभ्यता के बीच संवाद भर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाते के रूप में अलग घोषित किया गया है। संगवारी हो ये दिवस की स्थापना एक महत्व के बारे में और एक उद्देश्य ये है कि ये दिवस ला मनाए की पहली चीन के द्वारा करी गई थी अगर बात 7 जून 2024 के संयुक्त राष्ट्र महासभा की संकल्प ला अपना के हर साल 10 जून के ये दिवस मनाए की घोषणा किया गया और ये दिन ला मनाए के उद्देश्य ये है कि ये दिन जितकी भी सभ्यतागत उपलब्धि ला मानव जाति की सामूहिक विरासत मानना है और एक मुख्य लक्ष्य थे सांस्कृतिक विविधता के सम्मान करना आपसी समझ ला बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ला सुनिश्चित करना ये कर उद्देश्य थे संगवारी हो यानी कि सभ्यतागत उपलब्धि ला मानव जाति के सामूहिक विरासत मानना और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान करना आपसी समझ ला बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ला सुनिश्चित करना वैश्विक शांति संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश के अनुसार सभ्यताओं के समृद्ध विविधता को बढ़ावा देना शांति का मार्ग है ऐसे उकर कथन रही से तू संगवारी हो आज की ये दिन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है काबर की संवाद यानी सभ्यता के बीच संवाद भर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इकर अलावा भैया हो दूसर विषय में चर्चा की हमन की कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को अपना करके कार्बन उत्सर्जन को भारी मात्रा में हम कम कर सका थन पर्यावरण ला सुरक्षित बना सका थन और एकर बर आवश्यक होते कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मल्ला ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो भैया हो गुड बात देवो विराम और एकर संगे संग जाए के बिरा हुआ थे तो आप जम्मू सुनैया संगे संगवारी मल्ला मुकेश चतुर्वेदी के राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कृषक बंधुओं का कार्यक्रम चौपाल। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अखिलेश कुमार और ऋचा आर्य की आवाज़ों में। गीत और संगीत है अखिलेश कुमार का।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाश

0: आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: इसी के साथ कार्यक्रम गैर फिल्मी गीत अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रविंद्र जैन की लिखी हुई गीत, उन्हीं के संगीत निर्देशन में। स्वर है यीशुदास की, फिल्म का नाम है नैया।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। आशा भोसले की आवाज में, हसन कमल की लिखी हुई गीत, रवि की संगीत निर्देशन में, फिल्म का नाम है तवायफ।

कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंत में आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम है लोफर।

फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद डिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 60 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण

0: आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियू पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आपके लिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो। फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज थी, हसरत जयपुरी की रचना शंकर जयकिशन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं कन्यादान फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की तर्ज है।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था प्यार किए जा। अमर

0: की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर विशेष कार्यक्रम FM 100.7 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए हीर रांझा फिल्म में लता मंगेशकर को, कैफी आजमी के लिखे हुए गीत को संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

हाथ की सफाई इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार थे गुलशन बावरा और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए महबूब की मेहंदी। इस फिल्म में लता मंगेशकर को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत।

इस मोहब्बत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में हिना फिल्म का एक गीत, रविंद्र जैन की लिखी हुई गीत उन्हीं के संगीत निर्देशन में। इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। तो लीजिए, कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को अमी खानपी की लिखी हुई एक गजल, उस्ताद अहमद हुसैन व मोहम्मद हुसैन के संगीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
8: कार्यक्रम का अगला गजल लीजिए सुनिए, सिया सचदेवा का कलाम, देवबसक के संगीत निर्देशन में उत्कर्ष शर्मा की आवाज में।

कार्यक्रम गुलदस्ता का अंतिम गीत लीजिए, सुनिए अदनान सामी के स्वर में, समीर के लिखी हुई गीत, अदनान सामी के संगीत निर्देशन में।

अदनान स्वामी के गाए हुए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि की 11 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित क्रमशः हिंदी व अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इजराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said, the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
0: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time. Earlier, the NDA today adopted a resolution lauding Prime Minister Narendra Modi on achieving the feat of becoming India's longest-serving elected Prime Minister. During the conclave of NDA at Bharat Mandapam in New Delhi, a special political resolution was moved praising Mr. Modi's leadership. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India under Mr. Modi's leadership has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that PM Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. The Union Cabinet has approved Phase 2A of the Ahmedabad Metro Rail Project, covering the Koteshwar Road to Airport Corridor. The project includes a metro corridor of over 6 kilometers with 5 stations. Mr. Vaishnav said that upon completion, the Ahmedabad-Gandhinagar metro network will expand to around 78 kilometers, providing seamless connectivity to the airport and significantly improving public transport. The Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved two major central government infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive, that is PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. 122 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees.